आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

0: तनिषा
1: तनिषा ओए होए इतनी सुंदर शुरुआत ए दिल है मुश्किल टाइटल ट्रैक इन द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह इतनी खूबसूरत और मीठी मीठी आवाज से जब दिन की शुरुआत हो जाए तो पता ही होता है कि दिन तो अच्छा ही जाएगा जी अरिजीत सिंह के साथ साथ अपनी भी बात कर देती हूँ यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनिषा के जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान
2: गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल
1: ओए होए
2: लुकिंग वेरी गुड वेरी नाइस
1: हां जी दिन कैसे जा रहा है क्योंकि दिन तो अभी शुरू हुआ है दिन बढ़िया जाएगा इसकी गारंटी मेरी है बिकॉज यहाँ बहुत अमेजिंग गाने लाइन अप है आपके लिए ढेर सारी हम बातें करने वाले हैं पर शुरुआत आपके मैसेजेस से होती है आपको पता है
2: बड़ा अपने मन की करे
1: सही बात है आपके मैसेजेस के बिना ये मन खुश नहीं हो पाता यार
2: हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान
1: किसी ना किसी की आंखें किसी ना किसी का निशान तो ढूंढ रही होती है लगे रहो इस खोज में कभी ना कभी तो मंजिल तक पहुंच ही जाओगे
3: सफर का ही था मैं सफर का रहा
1: Another beautiful track बहुत सुंदर लिरिक्स हैं यार इस गाने के
2: देखा तेरी आंखों को
1: That cutie Shahid in this track, oh my God. Shahid tha kya isme? Haan, Shahid hi tha, I think, yeah?
4: Main thehra raha, zameen chalne lagi. Dhadka ye dil, saans thamne lagi.
1: ऐसा ही होता है बाबू जब इश्क हो जाता है तो हरा ढेर सारी बातें करनी है और गाने तो देखो मैंने आपको बता दिया इस घंटे में कितने कमाल के हैं अब आपके मैसेजेस आ जाना चाहिए ऑलरेडी आई हैव गॉट अ फ्यू मैसेजेस ओवर हियर मेरे आने के पहले ही पहुंच जाते तो प्यारे हो यार आप लोग इसी बात पे एक प्यारा गाना आपके लिए स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल जी बिंदास मेरी जान

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: धड़क मूवी से अजय की आवाज में पहली बार यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा के साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहां पर। वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान, और वक्त हो गया है आज के मैसेजेस पढ़ने का। सो आई हैव गॉट अ फ्यू गुड मॉर्निंग मैसेजेस और बड़े सुंदर सुंदर है, ठीक है। सो सबसे पहला मैसेज आया है अबरार जी का, कहते हैं हैप्पीनेस इज ऑलवेज अ चॉइस, यू कांट वेट फॉर सर्कमस्टांसेस टू गेट बेटर, यू हैव टू क्रिएट योर ओन गुड फॉर्च्यून, सो लुक फॉर वेज टू बी हैप्पी एवरी डे। गुड मॉर्निंग, एंड दैट्स सच अ ब्यूटिफुल थॉट टू स्टार्ट योर डे विद, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं होगी ना, पर हमें उन्हें अपने अकॉर्डिंग टर्न करना पड़ेगा, अपनी लेंस को टर्न करना पड़ेगा, सो दैट हर चीज़ में कोई ना कोई पॉजिटिव साइड निकल कर आ ही जाएगा। आप देखोगे तो सच्ची ऐसा होता है। देन वी हैव शशिकांत पाटिल जी, वो कहते हैं अ ब्यूटिफुल डे स्टार्ट्स विद अ ब्यूटिफुल माइंड सेट, थिंक पॉजिटिव, स्टे ग्रेटफुल एंड मेक टुडे अमेजिंग इन डीड। एज आई सेड, आप एक पॉजिटिव लेंस से चीज़ों को देखोगे तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगेगी नहीं जितनी हम एकदम से उसे यू नो पैनिक करके बना देते हैं। देन वी हैव नाजनी जी, कहती हैं वेन यू वेक अप आस्किंग व्हाट्स रॉन्ग यू विल फाइंड प्लेंटी दैट्स रॉन्ग, बट वेन यू वेक अप आस्किंग व्हाट्स पॉसिबल यू विल डिस्कवर अपॉर्चुनिटीज यू नेवर डिसाइडेड बिफोर। आप देख रहे हो कोइंसिडेंटली आज सारे के सारे मैसेजेस अबाउट अ पॉजिटिव माइंडसेट है, कि अपने दिन की शुरुआत अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करोगे, ये सोच के करोगे कि भाई आज तो तोड़फोड़ एज इन पॉजिटिव वाली कि बढ़िया होगा सब कुछ, यू नो एवरीथिंग इज गोना गो वेल, तो वही होगा, नोबडी कैन चेंज दैट। हाँ जी। देन अर्श का मैसेज आया, गुड मॉर्निंग जी, यू टू हैव अ मैग्निफिसेंट डे। संधु जी का मैसेज भी आया है, गुड मॉर्निंग कहते हैव अ ब्लेस्ड डे, विशिंग यू द सेम संधु जी। एंड मोहम्मद असलम साहब ने एक बड़ा सुंदर सा हैप्पी ट्यूसडे भेजा है हमें, और बिलाल जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एंड व्हाट आर द प्लान्स फॉर द डे। ऑब्वियसली ऑफिस वगैरह जाना होगा और घर पे बहुत सारे काम होंगे एंड ऑल, उसके अलावा खुद के लिए आज क्या कर रहे हैं ये जानना चाहूंगी। 3311063 पर मैसेज कीजिए, बताइए, और फिलहाल सुनते हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर। स्टे ट्यून्ड एंड रेडियो बिंदास मेरी जान।
1: कूल सॉन्ग
0: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में K3G से ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक सुबह सुबह, और सूरज मध्यम होने का तो यहाँ हम इंतजार करते हैं पर उसके बाद भी राहत नहीं मिलती, वहाँ इतना क्रेजी वेदर हो रखा है। यू ऑल लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM तनिषा आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर, और एकदम तगड़ी वाली मोटिवेशन लेकर आ गई हूँ मैं। मोटिवेशन और मे बी अ रियलाइजेशन, हाउ एवर इज स्टक विद यू। जरा सुनिए जाकिर खान साहब ने इतनी कमाल बात करी है।
1: फ्रैंक सिनाट्रा का जो गाना है ना, उसके अंदर एक लाइन है कि आई एम श्योर यू न्यू दैट आई बिट ऑफ मोर देन आई कुड च्यू। हर बार जिंदगी में आपके पड़ाव आएगा जब आप आपको लगता है कि लेवल अप करना पड़ेगा। अपने वजन से 10 गुना ज्यादा उठा लेते हो और वो आपकी एक एक हड्डी तोड़ देता है, और आपके आसपास के लोगों को दिख रहा होता है, जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं कि ज्यादा कर लिया इस बार। कई बार आप उठा पाते हो, कई बार छूट जाता है आपके हाथ से। लेट द रिकॉर्ड शो दैट आई टुक द ब्लो, कि हाँ जब बेइज्जती हुई, अपमान हुआ, तब भी वो भी बिल्कुल हक से चेहरे पर खाए, बट इन द एंड लेट मी से नॉट इन द शायरी आई डिड इट माय वे।
0: Exactly, वही बात है यार। If you decide on something और आप उसमें efforts डाल रहे हैं और आपने realize नहीं किया कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मेरी capacity से जितना मैं handle कर सकती हूँ उससे कहीं ज़्यादा हो गया, कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए खुद को ऐसे पुल डाउन नहीं करना है कि यार तू तो कर ही नहीं पाती यार, तुझसे तो होता ही नहीं, इट्स ओके यू ट्राइड, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो बहुत बड़ी बात है खुद में ही ट्राई करना। कुछ लोग तो ट्राई भी नहीं करते, डर जाते हैं कि यार अगर सही नहीं हुआ या फिर जो भी स्टेप मैंने लाइफ में लिया वो पॉजिटिवली नहीं टर्न आउट हुआ तो क्या होगा, और वो उस कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं बिना ट्राई किए। एटलीस्ट यू ट्राइड, हुआ तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो ऊपर वाले की मर्जी का होगा यार, और उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सेंडिंग अ ब्यूटीफुल जाके हुए मोहित चौहान की आवाज में मनला फंगा, स्टे ट्यून्ड एंड यू विद अस मेरी जान।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

0: तीसरी मंजिल मूवी से रफी साहब की आवाज में ओए, दिल खुश हो गया मेरा सुबह सुबह ये गाना सुन के. अमेजिंग ट्रैक और क्या कमाल लिरिक्स होते थे. लाइक यू नो दे आर हैविंग अ बैंटर ऑल्सो बट स्टिल इट्स सो डीप एंड सो मीनिंगफुल. खूबसूरत यार ऐसे गाने सच में अब नहीं बनते. आई एब्सोल्युटली अग्री विद दिस. अर्लियर जब ऐसे मम्मी पापा बोलते थे ये चीज़ तो मुझे लगता है यार क्या बोलते हैं इनको समझ नहीं आते आज के गाने. बट नाउ आई अंडरस्टैंड यस दे वर राइट. तनीषा के साथ हैं आप रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM पर. बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. वक्त हो चुका है रेडियो ऑल ऑफ प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज. ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में आज का जो मेरा सवाल है वो है विच एनिमल स्लीप्स स्टैंडिंग अप. एक ऐसा एनिमल है जो कि खड़े खड़े सोता है. कौन सा एनिमल है उसका नाम आपने मुझे बताना है. अगर आप जानते हैं उसके पीछे का रीजन तो वो भी जरूर साथ में बताइएगा, नहीं तो कुछ देर में आके मैं बता ही दूंगी मेरी जान. कौन सा ऐसा एनिमल है जो खड़े खड़े सोता है. 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. दो कुछ इंसान भी सो जाते हैं खड़े खड़े जो यू नो एट टाइम्स वी गेट सो टायर्ड एंड होता है कि लॉन्ग हेक्टिक डे होता है और आप घर नहीं पहुंचे और लाइक वट एवर द सिचुएशन इज यू आर स्टैंडिंग और इवन यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर यू वुड जस्ट फॉल अस्लीप क्योंकि बॉडी कांट टेक इट एनी मोर. Yes, but that's not the answer. You have to tell me an animal जो कि खड़े खड़े सोता है. 3311063 पर. Stay tuned, Jubindas.
1: Radio

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.

0: दस मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में रश के कमर ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज Blackboard Stories का जो आज मैंने सवाल पूछा था एक जवाब अपने दिमाग में रख के पूछा था ठीक है आई हैव गॉट अ फ्यू मोर आंसर्स ओवर हियर एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट यू नो यहाँ पे मैं कुछ पढ़ के या फिर यू नो आई हैव रेड अबाउट समथिंग एंड आई फाउंड आउट समथिंग उसके बारे में बात करती हूँ एंड देन यू गाइज गिव मी एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू दैट मैं और भी ज़्यादा सीख जाती हूँ सो मेरा क्वेश्चन आज का ये था कि ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि खड़े खड़े सोता है एंड आई हैव गॉट द आंसर्स ओवर हियर चेरी ने कहा है ज़ीब्रा एंड अर्श ने कहा है हॉर्स लेकिन देर आर मोर एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट जिराफ हॉर्स ज़ीब्रा डोंकी म्यूल कैटल ये भी थोड़ी बहुत नींद ऐसे छोटी मोटी नैप ले लेते हैं खड़े खड़े एंड द रीज़न इज कि वो प्रे एनिमल्स हैं और दे हैव टू वॉच आउट फॉर द प्रेडेटर्स और अगर वो लेट के सो गए ज़मीन पर तो उनके लिए उठना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है सो जब उन्हें लगता है कि आसपास खतरा हो सकता है दे keep standing and take a nap और कुछ देर के लिए they also have to lie down and take proper REM sleep you know जो deep sleep होती है उसकी ज़रूरत उन्हें भी होती है पर mostly they all are standing up and sleeping and and most of them have this stay apparatus in their legs जो कि उनको खड़े रहने में you know उनके joints को lock कर देता है while they are not using those muscles and that's really cool right ऐसी ही और amazing information जानने के लिए क्या करना है मेरे साथ बने रहना है फिलहाल बढ़िया गाना सुनते हैं stay tuned and Jio Bindas

0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: हेलो टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो ओलिव

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस्तन निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: बेबी को बेस पसंद है। तनिषा
1: बेबी को बेस तो पसंद है पर ये वेदर कतई ना पसंद आएगा बिकॉज भाई साहब क्या है ये। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। The answer is no. So, weather की बात करते हैं कि कैसा मौसम हो रखा है। बहुत गर्म। जी हाँ, the temperature is 37 degrees right now, but it feels like 40 degrees. बहुत ज़्यादा। And I never thought, you know, कि गर्मियों में ऐसा होगा कि मुझे उबलता हुआ पानी टैप से मिलेगा without even turning on the water heater, और मुझे रात को ऐसे पानी collect करके रखना पड़ेगा bucket में, so that मुझे सुबह ठंडा पानी मिले, and you know, I can shower with that cold water instead of that उबलता हुआ पानी. That's what I've been doing these days, and that's absolutely crazy and mind-blowing. So, humidity कम है पर इट्स वेरी हॉट, थोड़े बहुत क्लाउड्स और सनशाइन है, बट स्टिल आउटडोर एक्टिविटीज़ डेंजरस हैं, वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जा रही है आपको। हाईएस्ट टेम्परेचर आज 46 डिग्रीज जा सकता है और लोएस्ट 37 तो ऑलरेडी है ही है। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो मेरी जान, एंड यू नो, लाइट फूड खाओ, ऑल्सो बहुत सारा पानी पियो, कीप द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑल दोज थिंग्स विद यू, सो दैट आप हमेशा हाइड्रेटेड रहें और स्वस्थ रहें और सलामत रहें। जी, सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

आतिफ असलम और अलीशा चुनाव की आवाज में अजब प्रेम की कसम कहानी से तेरा होने लगा हूँ। ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM। तरीशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर, और वक्त हो गया है आपकी सेहत का ख्याल रखने का, रिमाइंडर देने का। वेलनेस फिक्स में एक बहुत आसान सी चीज़ और एक्चुअली वेरी कॉमनली नोन चीज़ है ये, एंड हम या तो प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं उस पर, या फिर भूल जाते हैं, ध्यान से निकल जाता है। तो इट्स काइंड ऑफ अ रिमाइंडर ओनली कि अपनी वर्क स्पेस पे, अपनी डेस्क पे एक छोटू सा प्लांट लाकर रख लीजिए। जी हाँ, इट हेल्प्स अलॉट, क्योंकि जब भी आप ग्रीनरी देखते हैं ना, देर इज़ दिस बायोफीलिया इफेक्ट, जिसकी वजह से आप बहुत, जो आपका स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बेटर होता है, अटेंशन टू डिटेल बेटर हो जाता है, एंड मूड जो है वो इंस्टेंटली अप हो जाता है। जी हाँ, इट द प्लांट्स द ट्रीज हैव दैट इफेक्ट ऑन अस। दैट्स व्हाई कहते हैं ना, देर इज़ वन कंट्री, आई थिंक जापान इट इज़, कि वहाँ पर आपको मैंडेटरी है फॉरेस्ट लीव। कभी कभी डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जाइए जंगलों में जहाँ पर बहुत सारी हरियाली है, वहाँ जाकर वक्त बिताओ अगर आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, एनजाइटी हो रही है, तो उसके लिए। तो अगर वो चीज़ हम अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं तो सोचो चीज़ें कितनी बेहतर हो जाएंगी हमारे लिए, राइट? सो इफ़ यू डोंट हैव अ प्लांट ऑन योर डेस्क, ब्रिंग इट टुडे, दिस इज़ योर साइन, लेकर आइए एंड यू विल सी द चेंजेस, द पॉजिटिव चेंजेस इन योर डेज। यस, देन आप भी कहेंगे आई फील गुड। स्टे ट्यून्ड एंड जी।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Joy Alucard brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucard. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucard in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucard, world's favorite jeweler.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में ही रंजना फ्रॉम द मूवी बच्चन पांडे। और आज सुबह उठी मैं और मैंने इंस्टाग्राम खोला और मुझे मिल गई एक खुशखबरी, वो ये थी कि अरिजीत सिंह ने जो अपनी रिटायरमेंट ली थी वो खत्म कर दी है, वो वापस आ रहे हैं। आवारापन 2 जो मूवी आ रही है उसमें उनका गाना आने वाला है, सो एवरीबडी इज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि भाई अरिजीत सिंह है यार, मतलब कमाल आदमी है वो। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, दिनेश आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर। और वक्त हो गया है कतर की बात करने का कि कतर में क्या हो रहा है। सो QCB कतर सेंट्रल बैंक ने लाइसेंस जो है वो ग्रांट कर दिया है कतर के फर्स्ट इंश्योरेंस प्राइस कंपैरिजन प्लेटफॉर्म के लिए। यस, इट विल जस्ट मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। आपको ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स के पास अलग अलग से नहीं जाना पड़ेगा टू फाइंड आउट अबाउट देयर प्राइजेस, कवरेज, बेनिफिट्स, पॉलिसी फीचर्स। आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट प्रोवाइडर्स की कंपेयर कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कौन सा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा और बेस्ट और सूटेबल रहेगा। एंड दैट इज रियली अमेजिंग। दैट्स व्हाई यू नो घर से दूर आकर भी ऐसा नहीं लगता कि हम घर से दूर हैं, बिकॉज कतर हैज़ मेड अस फील होम लाइक एनीथिंग, राइट? ऐसे खुली बाहों से स्वागत कर लिया एंड सच अमेजिंग अमेजिंग थिंग्स दे आर कमिंग अप विद विच मेक्स आवर लाइफ वे मोर इजियर। Sending an amazing track your way, Madhur Sharma aur Ashok Maskeen ki awaaz mein bulaye. Stay tuned, Jio Bindas Meri Jaan.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर। The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
3: Doctor on air, brought to you by Naseem Healthcare.
4: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
3: Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.

0: मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
0: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने 32 नई इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो है वो अपनी बिया ऐप पर लॉन्च कर दी हैं. और ये जो इनिशिएटिव है इट एम्स टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज फास्टर, इजियर एंड फुल्ली डिजिटल. हर चीज़ इतनी डिजिटलाइज्ड होती जा रही है तो व्हाई नॉट ऑल दीज सर्विसेज. पीपल कैन एक्सेस दीज सर्विसेज एनी टाइम एनी वेयर अपने यू नो सहूलियत के हिसाब से विदाउट विजिटिंग मिनिस्ट्री ऑफिसेस. सो जो सर्विसेज इसमें इंक्लूड हुई है वो है अप्लाइंग फॉर परमिट्स एंड लाइसेंसेज, रिन्यूइंग लाइसेंसेज, अमेंडिंग लाइसेंस डिटेल्स, कैंसलिंग लाइसेंसेज. और बहुत सारी नई सर्विसेज रिलेटेड टू रेडिएशन प्रोटेक्शन भी उसमें इंक्लूड की गई है, जैसे कि पर्सनल लाइसेंस फॉर वर्किंग विद रेडिएशन, लाइसेंस फॉर रेडियो एक्टिव मटीरियल एंड रेडिएशन डिवाइसेज, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट परमिट्स फॉर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, लाइसेंस फॉर व्हीकल्स ट्रांसपोर्टिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स. तो सोचो कितना ज़्यादा आपका काम आसान हो जाएगा. Whoever is working in this sector, in this field, जिन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती है. नो यू हैव टू गो टू द मिनिस्ट्री ऑफिस एंड देन वेट अपने टर्न का एंड ऑल द प्रोसेस इज देयर. नाउ यू जस्ट हैव टू गो क्लिक अप्लाई, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. These services are designed to reduce paperwork, save time and speed up the approvals. And ye jo launch ki hai inhone services, obviously ye jo digital transformation strategy hai aur jo hamara Qatar National Vision 2030 hai uske sath fully align hoti hai. So that's really amazing. Whoever needs these services, do remind them or let them know about it so that unka bhi waqt save ho jaye. Aur sunte rahiye Radio Olive, Jio Bindaas. Cool song. Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
1: Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai. Cool song.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

0: तनिषा
1: गुरु मूवी से माया माया एंड लास्ट ईयर जब वॉइस ऑफ कतर का फिनाले हुआ था देयर वाज दिस गर्ल पार्टिसिपेंट टॉप 10 में जो आई थी आर्या उन्होंने ये गाना परफॉर्म किया था एंड व्हाट माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस शी गेव वो आज तक एज डे मेरे दिमाग में मतलब जब भी मैं ये गाने सुनती हूँ मुझे वही याद आती है इट वाज ब्यूटीफुल यार यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं आप एंड द डे यू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई अब इससे ज्यादा वियर्ड क्या होगा दुनिया में नहीं अब तो हो ही सकता सब देख लिया है कुछ और वियर्ड हो जाता है जस्ट टू गेट फेमस ऑन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया फॉर दैट मैटर लोग कुछ भी कर रहे हैं आजकल नाउ देयर इज दिस अंकल इंडिया के एक विलेज में सो उन्होंने नया फसाद शुरू किया था कुछ साल पहले ओके वो सालों तक उन्होंने ये चीज़ चलाई है कि जब विंटर्स होते थे वो मस्त ऐसे वेस्ट वगैरह में बैठते थे कोई उन्होंने जैकेट स्वेटर ब्लैंकेट कुछ नहीं लेना है ही इज़ लाइक मुझे बहुत गर्मी लगती है दैट्स जस्ट माय बॉडी टाइप यू नो आई जस्ट कांट टेक इट और समर्स में वो दो तीन ब्लैंकेट जैकेट स्वेटर सब पहन के बैठे रहते हैं कि मुझे गर्मी में बहुत ठंड लगती है रीज़न मेरे को फेमस होने का है तो ये तरीका निकाला है और इस बार की गर्मी में जब वो ऐसे बैठे थे तो ऑब्वियसली वीडियोस फिर से ऐसे उनकी वायरल हुई सोशल मीडिया पे एंड ऑल एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट कि अरे ये कैसे हो सकता है ये तो क्रेजी चीज़ है लेकिन फिर एक इंसान को ऐसा ही लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है आई जस्ट नीड टू लाइक स्नीक इन एंड चेक कि एक्चुअली इनके साथ ऐसा है कि नहीं जब वो अकेले हैं तो बिना बताए सरप्राइज विजिट दी किसी ने उनके घर पे और वहाँ जाके देखा अंकल कूलर में बैठे हैं वेस्ट पहन के क्योंकि गर्मी लग रही है और जैसे ही देखा कि उस बंदे के हाथ में कैमरा है फटाफट से ब्लैंकेट ओढ़ लिया और फिर उनके आने लगे पसीने क्योंकि क्रेजी वेदर हो रखा है ना इस वक्त तो लोगों ने पूछा कि ये पसीना क्यों आ रहा है आपको कहते अरे नहीं वो तो मैंने अभी खाना खाया है बहुत सारा पानी पिया है ना तो ये तो वो है जी पानी ने अपना रास्ता बदल लिया है वो पसीना बन के निकल रहा है तो मतलब कुछ भी कर रहे हैं आजकल एंड देर आर फ्यू एक्ट्रेसेस ऑल्सो नाउ लाइक मे बी देर आउट ऑफ वर्क और समथिंग और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं बट आप अपनी कला की थोड़ी इज्जत तो करो यार कुछ भी वीडियोस बना रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं जस्ट टू गेट फेमस ऑन सोशल मीडिया एक बार फिर से और क्रेजी हो गया भाई क्रेजी चीज़ें हो रही हैं एंड दिन भर ये ब्रेन रॉट देख देख के मेरे दिमाग में भी वही सब भर गया तो आइए जरा उसे क्लीन करते हैं एक सुंदर सा गाना सुन के शिराज उपल की आवाज में रंजना मूवी से टाइटल ट्रैक स्टे ट्यून्ड एंड जीवन दास

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: Denisha. Denisha.
1: Denisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Denisha, aapke saath. Bindaas mornings chal rahe yahan par. And I just read something. और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं चाइना चली जाती हूँ. देखो, जापान में तो ये पॉलिसी थी कि यू नो, इफ़ यू हैव वर्कड इन अ कंपनी फॉर लाइक रियली लॉन्ग ईयर्स एंड यू हैव बीन लॉयल एंड यू हैव डन योर जॉब वेरी डेडिकेटेडली, तो आप जब रिटायर हो जाते हो, यू डोंट जस्ट हैव टू लीव द जॉब एंड गो होम. नो, यू कैन कम देयर. वो उनको एग्जीक्यूटिव लेवल पे ऐसे प्रमोट कर देते हैं. दे जस्ट हैव टू कम टू ऑफिस, हैव टी एंड न्यूज़पेपर पढ़ने का और कुछ नहीं करने का, एंड दे विल गेट दैट एग्जीक्यूटिव लेवल का सैलरी. नाउ चाइना में ये हुआ है कि एक कंपनी ने अपने 18 एम्प्लॉयज को फॉर देयर लॉयल्टी एंड देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क 1.5 करोड़ के फ्लैट्स दिए हैं. सम 18 एम्प्लॉयज, यस. एंड कहाँ से मिलती है ऐसी कंपनीज जो ऐसे लॉयल्टी को रिवॉर्ड कर रही हो, जो ये चेक कर रही हैं कि आपकी एम्प्लॉय की वेलबींग कैसी है, यू नो, मेंटल स्टेट कैसा है, एंड इफ इट इज़ रिक्वायर्ड यू कैन टेक अ मेंटल डे ऑफ. All these things are happening around the world. And जब भी मैं अपने आस पास के लोगों से पूछती हूँ, like you know, my friends or acquaintances, उन सब की कंपनियों में नहीं हो रहा है, तो ये किसकी कंपनी में हो रहा है? And जितने भी bosses सुन रहे हैं, I would say it's high time you should reward the loyalty. Because once you start looking out for your employees, the employees will start looking out for your company. It's a give and take, meri jaan. Haan ji, stay tuned, Andrew Bindas. Radio Olive.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Tanisha.
1: खिलाड़ी 786 से बलमौली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. एंड देयर इज दिस स्टडी जिसमें डेटा कलेक्ट किया गया 33 से ऊपर की एज के लोगों का. एंड पता चला है कि 33 की एज के बाद लोग नए गाने सुनना बंद कर देते हैं. क्या सच में ऐसा हो रहा है क्या? आई वॉन्ट, आप मुझे बताएं, whoever is 33 and above, please बताएं क्या आप नए गाने बिल्कुल नहीं सुनते हैं? मतलब आई हैव नॉट रीच देयर येट, लेकिन मैं सिलेक्टिव काफ़ी हो गई हूँ नए गानों में ना, बहुत ऐसे डिसाइड करके कि भाई ये ठीक है, और मोस्टली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं. वो आई थिंक एक जनरल व्यू पॉइंट होगा राइट नाउ हम सब का. बट इज़ इट ट्रू क्या 33 के बाद लोग नए गाने सुनना बंद कर देते हैं? बिकॉज एज फार एज आई नो माई मदर, She still loves to listen to new songs. Though most of the time मैं ही introduce करवाती हूँ उनको, लेकिन सुन लेती हैं वो खुद भी कुछ कुछ. तो आप बताएं क्या सीन है actually? क्या सच में लोग 33 की एज के बाद नए गाने सुनना बंद कर देते हैं? 3311-1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444-1063 पर. मोहम्मद यूसुफ खान साहब का मैसेज ऑलरेडी आ चुका है मुझे कि ये तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है तनिषा, मैं तो नए गाने भी सुनता हूँ और पुराने भी सुनता हूँ. देखो पुराने में तो मैं बहुत ज़ोर से अग्री करती हूँ क्योंकि वो इतने सुंदर होते हैं यार, नए वाले थोड़े से सिलेक्टिव होना तो बनता है आई फील. ठीक है, अभी सिलेक्ट करके एक गाना भेज रही हूँ आपके लिए, सुने और इन्जॉय करें और सुनते रहे रेडियो ऑल एफ. जियो बिंदास.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Shah Rukh Khan.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Akshay Kumar.
5: Hi, this is Anushka Sharma.
6: And I'm Ashwin Varsity.
7: This is Ranveer Singh. Stay tuned.

0: तनिषा बीवी नंबर वन से हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन की आवाज में इश्क चांदी है इश्क सोना है. सही बात है, सोने भी नहीं देता फिर ये. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है और प्रिंसन का मैसेज आया था कुछ देर पहले. तनिषा, वेयर इज वर्ड ऑफ द डे? हियर इट इज, योर विश इज माय कमांड. यस,
1: ये है चलती फिरती डिक्शनरी.
0: तो आज का जो वर्ड है उर्दू से लाई हूँ मैं एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल वर्ड. इट इज मकतूब, MAKTUB, मकतूब. इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि व्हाट इज मेंट फॉर यू विल बी देयर इन योर डेस्टिनी. मतलब जो भी आपके लिए डिसाइडेड है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता. एंड व्हाट इज नॉट मेंट फॉर यू वो आपके हाथों से कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. आप कितने भी जतन कर लो, कितनी भी कोशिशें कर लो, You won't be able to get it, right? So, हर चीज़ को perfect करने की कोशिश मत कीजिए. आप बस अपने efforts डालिए, जो आपके लिए है वो आपका ही रहेगा. समझ रहे हो बात को? ये हर चीज़ में चल रहा है, ये करियर पे भी बैठ रहा है आपके, आपके जो aspirations है उस पर भी, the people in your life and the things you want in your life, ये हर aspect में perfect बैठता है. मकतूब इज द वर्ड एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल वर्ड. आई एब्सोल्युटली लव उर्दू यार, क्या सुंदर साउंड करती है वो लैंग्वेज. आ ऑन दैट नोट, सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक, जबरदस्त हिट योर वे, मस्त होगा जून इन द वॉइस ऑफ जावेद बशीर साहब. स्टे ट्यून ऑन जियो बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. और कुछ देर पहले मैंने एक उर्दू का वर्ड बताया था, मकतूब. और मोहम्मद यूसुफ खान साहब बहुत खुश हो गए हैं वो सुन के, बिकॉज इट्स हिज मदर टंग एंड ही नोज दिस वर्ड एंड ही वॉज वेरी हैप्पी दैट मैं उर्दू लेकर आई. बिल्कुल, और भी बहुत सारे वर्ड्स लेकर आएंगे, बिकॉज यार उर्दू इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज. आई एब्सोल्युटली लव इट. ऐसे छोटे मोटे वर्ड्स ना मैंने जो सीखे हैं बेसिकली वो मैं आइदर म्यूजिक और पाकिस्तानी शोज देख देख के सीखी हूँ. सो बड़ा अच्छा लगता है जब आप उसको ऐसे डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ करते हो. इट्स ऑल सो स्वीट. एंड स्वीट के साथ एक चीज़ याद आई मुझे कि फटाफट से जाओ बी ए स्वीट हार्ट एंड गो फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया इफ यू हैवंट सो फार. radioolive.qu इज द हैंडल. और यस्टरडे वी पोस्टेड कलर वर्स का वीडियो. इट इज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. यू हैव टू गो, टेक योर किड्स अलॉन्ग. बहुत मजा आएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे करने के लिए. एंड देर आर अदर थिंग्स विच आर पोस्टेड. कॉन्टेस्ट वगैरह चलते रहते हैं तो पार्टिसिपेट करो ना यार, जीत जाओगे कुछ बढ़िया सा. मैं चाहती नहीं हूँ कि आप कुछ भी मिस आउट कर जाओ, इसीलिए बताती रहती हूँ. ठीक है, और सुनते रहो रेडियो ऑल ऑफ लौट की रादियो. कुछ ही देर में जियो बिंदास मेरी जान.

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ओलिव शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

जैन सोहेब और कुरातुलन बलोच की आवाज में ठगिया. ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू हाउ आई लव दिस ट्रैक. मतलब सुंदर लिरिक्स, ऊपर से सुंदर आवाजें, क्या बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं दोनों ही. आई मीन जैन सोहेब दोनों एंड देन कुरातुलन बलोच आल्सो. अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग वॉइसेस. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. और वक्त हो चुका है मेरी जानी का मेरी जान. कल मिलेंगे, दोपहर बोलने वाली थी, देखा ऑलरेडी रिचार्ज बैठ गया है दिमाग में, अभी वक्त लगेगा. सो कल मिलेंगे सुबह 6 बजे. दोपहर में आप मिलेंगे सुदेव से और अभी कशिश आती होगी आपकी लाइफ को और भी मस्त बनाने के लिए. सो बने रहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है. अगले 3 घंटे भी आपके सेट है, एक्चुअली आपका पूरा दिन सेट है, आपने बस हमारे साथ बने रहना है. हाँ जी. एंड इफ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद अस, 3311106 इज द नंबर. मैसेज कीजिए बिंदास बिना किसी हेजिटेशन के. यू कैन ऑल्सो कॉल बाय द वे 4444106 पर. जाती जाती ये कहना चाहूंगी मेरी जान, अपना ख्याल रखें, स्टे हाइड्रेटेड, एकदम लाइट खाना खाएं जो ज्यादा ऑयली ना हो, बिकॉज वेदर अभी ठीक नहीं है. सो अपनी हेल्थ का ख्याल हमें रखने की ज़रूरत है. ओके, एंड वाइल ड्राइविंग बी वेरी केयरफुल, फोन्स वगैरह यूज़ नहीं करने क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हैं मेरी जान. ठीक है, हाँ जी. और इफ देयर इज एनीथिंग एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, वहाँ भी हमें मैसेज कर सकते हैं. radioolive.qa इज द हैंडल. और जो वीडियोज़ वगैरह पोस्ट किए हैं चेकआउट कीजिए, बिकॉज इट इज़ फॉर यू. आप नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा, आप तक चीज़ें पहुँचनी चाहिए, इसका ख्याल है मुझे. जी हाँ, तो मैसेज भी कीजिएगा, देख लें तो कमेंट शॉमेंट कर दें, अच्छा लगेगा, खुश हो जाता है. बाकी बढ़िया गानों की जिम्मेदारी हमारी है. पूरा दिन एक से बढ़कर एक अमेजिंग गाने आपके लिए चलने वाले हैं. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जी बिंदास मेरी जान.

0: तुम रहो।
1: दीदी भैया अगर आप लोगों का चुप तुम रहो चुप हम रहे कह के हो गया हो तो मैं चुप तो नहीं रह सकती, तो मैं बात कर लूं प्लीज अगर आपकी आज्ञा हो तो। गुड मॉर्निंग पीपल एंड वेलकम 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। और देखो यार लाइफ तो देखो मस्त है, हर रोज लाइफ को और ज्यादा मस्त कैसे बनाया जा सकता है बस इस खोज में मैं जो है सुबह उठ जाती हूँ और आपके पास आ जाती हूँ और आपकी लाइफ को थोड़ा और एक एक्स्ट्रा मतलब पिंच ऑफ मस्तनेस देने के लिए जो है बस मैं काम कर रही हूँ, बस इतना ही उद्देश्य है मेरा, उद्देश्य इन अ सेंस लाइक इंटेंशन। आज क्या है ना कि मैंने अनारकली सूट पहना है विद झुमके, सो क्या है मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा यू नो हिंदी और उर्दू और इन सारी लैंग्वेजेस को मिला के बात की जाए तो उससे क्या होगा ना कि एक लहजा थोड़ा अलग होएगा मेरा। कोशिश मैं पूरी कर रही हूँ, देखो आपको बस मुझे सपोर्ट करना है। तो आइए 3311063 पर अपने अपने स्टाइल में गुड मॉर्निंग और वेलकम मुझे कह दीजिए। बाकी आज गाने जो है एकदम चुन चुन के आपके लिए लेकर आई हूँ और जैसे कल मैंने कहा था मुझे तो ऐसा लगता है कि आप हर रोज आते ही सबसे पहले कॉकटेल 2 का एक गाना मैं आपको सुनाती हूँ। सो बस आज का शो का पहला गाना भी बिल्कुल सही कॉकटेल 2 से ही है, पर ये वाला मेरा फेवरेट है, मैं अपने आप को डेडिकेट कर रही हूँ, आपको अगर किसी को डेडिकेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। फिलहाल देखिए बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें मैं आपके लिए लिख कर लेकर आई हूँ सो उन पर भी बात करेंगे, लेकिन आने के बाद गाने के बाद आने के बाद जो है हम बात करेंगे मौसम की, सो स्टे ट्यून रहिए। और फिलहाल कॉकटेल 2 मूवी से मशू का गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो स्टे ट्यून रहो और कहते रहो जीव बिंदास।

0: Trek. Brought to you by Nanatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: सो जी, आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:12. दैट इज 10:12. स्टे ट्यून्ड रहिए जियो बिंदास.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: हाय रेडियो ऑलिव, 106.3 लिसनर्स, दिस इज शाहरुख खान.
5: शाहरुख खान
6: रेडियो ऑलिव. सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: ये मैं भी बस पानी से यही कहती हूँ कि यार तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी, क्योंकि इस गर्मी में जो है एक पानी ही मेरा सहारा है, जो कि मैं वैसे तो बहुत कम पीती हूँ। मुझे रिमाइंडर लगता है, मेरा फोन टिटिटिटे बजता है तब जाके मैं एक सिप पानी का पीती हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड देखो यार, वक्त जो है ये हो गया है आपको टेम्परेचर बताने का। हर रोज इस वक्त पे मैं हम बात करते हैं मौसम की, एंड मौसम में देखो पिछले कुछ दिनों से ज्यादा कुछ बदलाव आया नहीं है, ह्यूमिडिटी है बस वो बढ़ती जा रही है। सो आज टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री बढ़ा है, यानी इस वक्त करंट टेम्परेचर दोहा में हो रहा है 42 डिग्री सेल्सियस। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 43 डिग्री सेल्सियस और आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 34 डिग्री सेल्सियस। सो देखिए यार, यही मामला आज का चलने वाला है। और अगर मैं बताऊं तो 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड जो है वो चलने वाली है, यानी हवा जो है वो इतनी स्पीड से आज बहेगी। सो प्लीज़ अपने बालों को जो है थोड़ा बांध के रखना, वरना वो घुचुड़ मुचुड़ हो जाएंगे। यस, घुचुड़ मुचुड़ इज़ अ वेरी क्यूट वर्ड, इससे ज़्यादा बढ़िया वर्ड मुझे आज तक मिला ही नहीं है। मतलब आप सामने वाले को एक्सप्लेन कैसे करोगे कि आपके बाल या आपके कपड़े जो है वो क्रम्बल हो जाएंगे या वो उलझ जाएंगे। घुचुड़ मुचुड़ इज़ सच अ वाइब। सो देखिए, थोड़ी सी देर में एक और वाइब वाली न्यूज, SRK की वाइब वाली न्यूज जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले इस हीच को बीट करने के लिए कूल सॉन्ग ऑफ द RR आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। बाकी बातें जो है वो हम जारी रखेंगे, स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Cool song.

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

देखिए अब के जी कह रहे हैं कि मैं आशिकी हूँ तो मानना तो पड़ेगा। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। अब देखो यार, काफी सारी बातचीत तो हमारी जारी रहती है, लेकिन ये भी जरूरी है ना कि मैं मैसेजेस पढ़ूँ जो आप लोग मुझे भेजते हो। सो सबसे पहले तो मैं पढ़ना चाहूंगी मोहम्मद अरमान जी का मैसेज जिन्होंने मुझे फेसबुक की एक लिंक भेजी है। अब देखिए, ये तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगी एंड अरमान जी को भी कहना चाहूंगी कि हम ना बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करते हैं, एंड अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं ना। आप सब लोग जितने मुझे सुन रहे हैं उनको भी ये ध्यान रखना है कि आपके व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं भी कोई भी अनजान लिंक आए तो उसे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं मोहम्मद यूसुफ खान जी से। इन्होंने जो है मुझसे ये पूछा है कि यार कशिश, ये जो है हर रोज कॉकटेल टू का गाना कैसे आ जाता है, ये कोई यू नो प्लान्ड है या सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या इंटेंशनली कर रहे हो? सच में कोइंसिडेंटली हो रहा है, पता नहीं क्या। मुझे जो है जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ और गाना प्ले करने का वक्त आता है तब मुझे रियलाइज होता है कि ओ फिर से कॉकटेल टू का गाना। अस्मा जी ने जो है वो मुझे कहा है गुड मॉर्निंग कशिश, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग अस्मा जी। एंड साहिब जी ने मुझे लिखा है गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल, माय नेम इज साहिब। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बड़े क्यूट क्यूट मैसेजेस थे आपके। अब मैं जिस चीज़ को आपको बताने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं वो आपको बता देती हूँ। सो शाहरुख खान जी की नई मूवी आने वाली है किंग, ये हम सबको मालूम है, और उसमें जो कास्ट है वो कितनी स्टार स्टडेड है ये भी हमें पता है। कितने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है, एक्टर्स जो है, वो हमें उस मूवी में देखने वाले हैं। दीपिका पादुकोण, सुहाना अली एंड ओ माय गॉड, कौन नहीं है उस मूवी में, आधा बॉलीवुड है उस मूवी में। सो इस मूवी का जो आधा शेड्यूल है वो पूरा हो चुका है एंड दिसंबर 2026 में ये मूवी बिल्कुल तैयार है हमें मिलने के लिए। मतलब जितनी शूट होनी थी उतनी शूट हो चुकी है, अब बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में इसके शूट हुए हैं एंड अब शूट जो है बस आखिरी फेज में है, यानी लास्ट के कुछ सीन्स जो है वो बस शूट होने के लिए बचे हुए हैं एंड वो भी अगले एक हफ्ते में पूरे हो जाएंगे। उसके बाद ये मूवी एडिटिंग टेबल पर आएगी एंड धीरे धीरे करके हमें टीजर, हमें ट्रेलर, हमें गाने सब कुछ देखने को मिलेंगे। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या आप शाहरुख खान की नई मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो बताइए मुझे 3311063 पर मैसेज करके। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग गाना, क्योंकि यार देखो शाहरुख खान की मूवी आ रही है, ये सुन के हमें ना दिल को सुकून सा मिलता है। सो बस एक सुकून भरा गाना आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है, सो इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: यार देखो, मैं तो कहीं भी नहीं जा रही हूँ. मैं क्यों ही जाऊंगी? मैं तो आपको यहाँ गाने सुनाने, एंटरटेन करने और आपके स्ट्रेस से छुटकारा दिलाने के लिए आई हूँ. वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑलिवर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. हम देखिए, लाइफ ना ऑटोमेटिकली डबल ट्रबल मस्त बन जाती है जब आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो. तो देखो यार, एक तरीका है जो आज तो मैंने AI से नहीं पूछा, ना ही किसी सोशल मीडिया हैंडल से पूछा है, ना कहीं सर्च किया है. ये पर्सनली मैंने देखा है, जब भी मेरे आसपास के कुछ लोग हैं जो स्ट्रेस्ड होते हैं, जब वो परेशान होते हैं, जब वो ओवरथिंक कर रहे होते हैं ना, तो वो सफाई करना शुरू कर देते हैं एंड दिस works. And मैंने जब इसके बाद थोड़ा सा इस पर पढ़ना चाहा कि यार ये सफाई क्यों करते. सफाई जब आप करते हो ना, तो आप एक जोन में होते हो कि मुझे जो है इस जगह को डीक्लटर करना है. और उस डीक्लटर करने के प्रोसेस में आप कई बार अपने थॉट्स को जो है क्लियर कर देते हैं. आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि आखिर आपको चाहिए क्या. एंड इसी सोच में जो है आपका रूम भी साफ हो जाता है, आपका किचन भी साफ हो जाता है. ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप अपने किचन को गाने सुनते सुनते, डांस करते करते अगर क्लीन करते हो, तो उससे आपका स्ट्रेस जो है वो कुछ % कम हो जाता है. बस देखिए, तो आज का मंत्रा बिल्कुल सिंपल सा था. अगर आपको स्ट्रेस से जो है निजात पाना है, तो आप जो है क्लीनिंग या डीक्लटर को अपना एक तरीका मान सकते हैं. म्यूजिक चलाइए, डांस करते करते अपने बर्तन धोइए, या फिर अपना किचन टॉप जो है वो साफ कर दीजिए, या अपने शेल्फ जो है बस उसको ऑर्गेनाइज कर दीजिए. आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा बेटर फील होने लग जाएगा एंड इसी बहाने देखो सफाई भी हो जाएगी, है ना. मैं वो आपकी कशिश फ्रेश जो है सजेशन के बाद आपको एक फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो सुनाने वाली हूँ. सो स्टे ट्यून्ड रहो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास
1: रेडियो

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास
2: टाइम चेक
3: brought to you by
2: दानातल पहाड़ the ultimate कतरी adventure सुकवाकिफ अलखोर।
4: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो गया। इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:10 दैट इज 11:10। स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।
0: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
6: हाय, मैं हूँ सारिका। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
7: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: अगर सब लोग यही कहते रहेंगे कि तुझे गर्मी लगी तो मैं क्या करूं, तो फिर क्या होगा हमारा। वेलकम टू 106.3 रेडियो अलिफ पर, मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूं। एंड देखो, इस वक्त जो है, अगर आप किसी भी इंसान से बात करो ना, तो कॉन्वर्जेशन कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होती है कि हाय, हेलो, यार गर्मी बहुत है ना, ह्यूमिडिटी कितनी बढ़ गई है ना। सो देखिए, इस कॉन्वर्जेशन पॉइंट को आज हम हमारे रेडियो स्टेशन लेकर आ गए हैं। एंड आपसे मैं स्टूडियो से सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस हीट को बीट करने के लिए आखिर आप क्या कर रहे हैं। मतलब देखिए, वैसे तो कतर इज अ प्लेस जहां पर आपको गर्मी लगती है, ह्यूमिडिटी का एहसास होता है, लेकिन हर जगह एसी है। यहाँ पार्क में एसी है, कैब्स में एसी है, हर जगह जहां आप पॉसिबल जगह देख सकते हैं, रोड्स पर भी एसी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ह्यूमिडिटी का एहसास तो हो ही जाता है। सो बस इस गर्मी को बीट करने के लिए आप ऐसा क्या जो तरीका है वो अपनाते हैं, वो आप मुझे बता सकते हैं। कौन सी ऐसी ड्रिंक है जो आप पी रहे हैं, जैसे वाटरमेलन स्प्लैश आप पी सकते हैं, नींबू पानी आप पी रहे हैं, या अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए कुछ कर रहे हैं, या अपने चश्मे को जो है वो जो फॉग सा जम जाता है उसको हटाने के लिए क्या कर रहे हो, ये सब आप मुझे बता सकते हो कि इस गर्मी को, इन टोटल हीट को बीट करने के लिए कौन से तरीके आप अपनाते हो, खुद को ठंडा रखने के लिए बेसिकली क्या क्या करते हो। मैं तो देखो आपको कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनाती हूँ। सो वो गाना जो है वो भी आपके लिए आ रहा है, पोस्टर लगवा दो लुका छुपी से, बहुत ही अमेजिंग डांस नंबर है। सो इसे सुनो, इंजॉय करो और मुझे मैसेज करो 3311063 पर कि आखिर आप इस हीट को बीट किस तरीके से कर रहे हैं, क्या करते हैं आखिर आप बताइए मुझे। मैं हूँ आपकी कशिश, फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए चियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सोनिया, अगर आप लोग मेरी सोनिया नहीं होगी तो मेरा सोनिया कौन होगा?
1: वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइव फर्स्ट लेकर आ गई हूँ. एंड ऑफ कोर्स यू आर माय सोनिया, और आपके अलावा मेरा सोनिया कौन हो सकता है, क्योंकि देखिए इतनी गर्मी में आप मेरे साथी हैं और मैं आपकी साथी हूँ. वैसे देखो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इस वक्त गर्मी में जो है मैं कतर में हूँ, बिकॉज यहाँ पर हर थोड़ी दूर पे एसी मिल जाता है. रोज में एसी है, इंडोर टनल्स में एसी है, और हर दूसरी बिल्डिंग, मॉल, शॉपिंग सेंटर जो है वो एसी वाला है, वरना मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. देखो तो मैंने बस आप लोगों से ये पूछा है कि इस समर सीजन को आप हीट को बीट करने के लिए जनरली ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो अपनाते हैं. सो मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आए हैं. मोहम्मद यूसुफ खान जी ने मुझे लिखा है कि देखिए अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई चिंता ही नहीं होती गर्मी की, ह्यूमिडिटी की, क्योंकि आप ऑफिस में रहते हो मेजर टाइम. लेकिन प्रॉब्लम अक्सर उन लोगों को हो जाती है जिन लोगों को बाहर आउटडोर में काम करना होता है. सो जितने भी डिलीवरी एजेंट्स हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें बाहर धूप में काम करना होता है, उनके लिए तो एक यू नो डे ऑफ हो ही गया है. वो शाम को ही काम करते हैं या तो सुबह 10 बजे से पहले काम करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वेरी ग्रेट. एंड बस उनके लिए एक एडवाइस जो है वो यूसुफ खान जी ने दी है, और वो ये है कि हाइड्रेट रहना चाहिए आपको, ज्यादा से ज्यादा जूस पीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, एंड नेचुरल एनर्जी ड्रिंक्स आप जितना कंज्यूम कर सकते हैं आप उतना कीजिए. मुझे एलिफ जी ने भी जो है मैसेज किया है, और इन्होंने ये कहा है कि यार देखो मैं तो नींबू पानी जो है वो एक बॉटल में बना के स्टोर कर लेता हूँ, और नॉर्मल पानी की जगह मैं वही कंज्यूम करता हूँ, बिकॉज उससे ग्लूकोज मिलता है एंड सॉल्ट जो है वो भी बॉडी को मिलता है. तो जितना स्वेट के थ्रू हम लूज करते हैं वो सब हमें मिलता है, तो हमें डिहाइड्रेशन नहीं होता. ये मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा, इससे जो है मेरा आई थिंक वाटर इनटेक जो है वो भी बढ़ेगा, मैं टेस्टी होगा पानी इसलिए और ज़्यादा पीऊँगी. लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, सो वो इशू अक्सर आ जाता है, ज़्यादा शुगर कंज्यूम नहीं कर सकते. लेकिन आप अपनी हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखकर ये आइडिया जो है वो अपना सकते हैं. मुझे किसी और ने जो है वो भी मैसेज किया है, और उन्होंने ये लिखा है कि मैं जो है जब शार से बाहर आती हूँ तो पहले मैं बाल अपने जो है ड्राई कर लिया करती थी ड्रायर से, लेकिन अब मैं उन्हें एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे ज़्यादा देर तक मुझे जो है ठंडक मिलती रहती है. देखिए ये कुछ लोगों के लिए वर्क करता है, कुछ लोगों को ये हेल्थ का ज़्यादा प्रॉब्लम दे देता है. सो अगर ये आपके लिए आइडिया वर्क करता है सो ऑफकोर्स. और वैसे भी देखो हाल तो ऐसा चल रहा है कि हमें दिन में 3-3, 4-4 बार नहाना पड़ रहा है. सो ठीक है गाइज, जो लोग इंडिया में या अपने घरों पे जो है 3-3 दिन में नहाते थे, वो लोग अब 1 दिन में 4-4 बार नहा रहे हैं. मम्मियाँ कितनी खुश होंगी ना. बस इसी को जो है एक वैलिडेशन देते हुए सुभान अल्लाह कहते हुए, सुभान अल्लाह गाना जो है ये जवानी है दीवानी से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर. ये गाना इंजॉय कीजिए, और बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

0: ये गाना उन गानों में से एक है जो आप जब भी डीमोटिवेटेड फील करते हो और आपको जो है एक रश ऑफ यू नो लाइक पावर चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, तब आप ये गाना सुनते हो. बस मेरा ये वो वाला गाना है. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है. अब देखिए, थोड़ी देर पहले हम सब ये बात कर रहे थे कि किस तरीके से हीट को बीट किया जा सकता है, तो बस इसी के चलते मैं आपको एक खबर बताने वाली थी लेकिन हमारी बातचीत के दौरान मैं बता ही नहीं पाई. सो जापान ने जो है एक ऐसा फ्रिज इन्वेंट किया है, मतलब फ्रिज उसको कह रहे हैं, वो खैर एक बॉक्स है जिसमें सुपर जो है कूलिंग है और वो उन्होंने अपने शहरों के बीच बीच में रख दिया है जिससे लोगों को जैसे ही गर्मी लगे वो उसके अंदर जाके बैठ जाए और ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाए. अब देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि देखो ये तो हमारे यहाँ पहले से ही है, हमारे सड़कों पे एसी है, पार्क में एसी है, सो ऑटोमेटिकली आपको बैठ के ठंडा ठंडा कूल कूल फील होने लग जाता है. लेकिन ये जो इसको फ्रिज कहा जा रहा है लोगों के लिए, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है. मतलब सच में कुछ तो इनोवेटिव करते रहते हैं ये लोग टाइम टू टाइम. अब मुझे तो यार ये सोच के जो है थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि अगर ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे यहाँ आ गई तो इसमें भी लाइन लगेगी, लोग जो है वो खड़े रहेंगे कि अरे अब हमारी बारी है, हमारी बारी है, हमारी बारी है. फिलहाल इस फ्रेश आइडिया को सुनाते सुनाते एक फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है वो भी मैं आपको सुना रही हूँ. सो फिलहाल ये ट्रैक इन्जॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour.

जीरो मूवी से कुणाल गांजा वाला की आवाज में ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। अब देखिए यार, जीरो एक ऐसी मूवी है ना जिसमें शाहरुख खान ने भर भर के मतलब रिस्क पे रिस्क लिए। वो सुपरस्टार है, वो उसके नाम पे जो है बॉलीवुड को अलग अलग कंट्रीज में जाना जाता है, वर्ल्ड वाइड शाहरुख खान के नाम का डंका बजता है। उसे कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की, लेकिन फिर भी ये इंसान उठता है और कहता है कि नहीं यार मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, मुझे अलग टाइप का रोल करना है। और फिर हमें मिलती है ज़ीरो जिसे लोग पसंद नहीं करते, लेकिन अब विद टाइम रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इसे। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड वक्त हो गया है फैशन की बातचीत करने का, यानी आपको फैशन की दुनिया में इस वक्त क्या कुछ खास नया नवेला चल रहा है वो बताने का। सो अगर आपकी पर्सनालिटी मेरी तरह थोड़ी ब्लिंग ब्लिंग वाली, यानी आपको थोड़ी सी शाइनी

चीजें जो है पसंद है या थोड़ा सा यू नो अपने आउटफिट में क्वर्क पसंद है सो आप राइनस्टोन वाली चीजें ले सकते हैं. अब देखिए अगर आप सोशल मीडिया पे थोड़े से एक्टिव हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि हर इन्फ्लुएंसर अपनी मतलब अपने पास जो छोटी छोटी चीजें उन्हें बिडेजल कर रहे हैं, मतलब उन्हें जो है छोटे छोटे जो यू नो स्टोन होते हैं जेम स्टोन होते हैं उनसे उन्हें राइनस्टोन से पूरा जो है कवर कर रहे हैं ताकि वो थोड़ा ब्लिंगी ब्लिंगी दिखे लेकिन ये ओवर द टॉप भी ना दिखे. सो इस वक्त राइनस्टोन जो है वो इन ट्रेंड है, चाहे आप उसको नेकलेस में डालो, चाहे आप इयररिंग्स पहन लो राइनस्टोन वाली, या आपकी क्लोदिंग में कोई ना कोई राइनस्टोन का एलिमेंट है, स्पेशली जीन्स में या आपके स्कर्ट में अगर राइनस्टोन लगे हैं सो वो यू नो राइनस्टोन ऑन द टॉप है, चेरी ऑन द टॉप नहीं राइनस्टोन ऑन द टॉप है. सो राइनस्टोन वाली चीजें अगर आप लेने का सोच रहे हैं सो आप ले सकते हैं, बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आपके पास कोई ऐसी जीन्स है जिसे आप पहन पहन के बहुत बोर हो गए हैं, आप उसे रिटायर करने वाले हैं, सो आप एक वीकेंड पर जब आपके पास कोई काम ना हो तो बैठिए एंड अपने हाथों से राइनस्टोन जो है वो अपनी जीन्स पे अपनी डेनिम पे लगाइए. इससे क्या होगा कि आपका ना ऐसे DIY वाला जो है एक स्टेट बाहर आएगा, यानी कहीं ना कहीं बहुत कामिंग एक्टिविटी भी होती है. एक बार मैंने बताया था जो मेरा स्ट्रेस बस्टर वाला सेगमेंट है उसमें कि आप अगर ऐसे कुछ DIY करते हैं अपने कपड़ों के साथ और फिर उन्हें पहनते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है. सो देखिए स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, आप फैशनेबल भी दिखेंगे, ट्रेंड में भी दिखेंगे. तो बस फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना चांद मेरा दिल से आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए. आकर जरा बातचीत करेंगे डिटेल में किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर. यस सो स्टे ट्यून्ड रहो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास.

0: Time check. Time check. Brought to you by Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो गया. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे 12:12. दैट इज 12:12. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nainital Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
4: मैं हूं अली कपूर, रेडियो ओलिव, यो बिंदास.
5: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: मूवी का नाम जीनियस, और इस मूवी के चलते मुझे सिर्फ इस मूवी में एक ही जो पार्ट है वो जीनियस लगा है, और वो है ऑडियंस का पार्ट, जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि हमें ये मूवी नहीं देखनी है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, एंड मुझे जो है जोक मारने का बहाना चाहिए होता है, तो आप मेरे इस वाले स्टेटमेंट को जो है इग्नोर भी कर सकते हैं। मतलब जीनियस मूवी का नाम जो है वो जीनियस सिर्फ इसीलिए रखा गया था ताकि ऑडियंस जो है वो अपना दिमाग लगाएं और इस मूवी को देखने ना जाए। खैर, कुछ लोगों को अच्छी लगी है मूवी, सो लेट इट बी। बाकी एक ताज़ी तरीन खबर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। तो देखिए, अरिजीत सिंह के जितने भी फैंस हैं उनमें एक खुशी की लहर जो है वो दौड़ चुकी है, क्योंकि एक सोशल मीडिया पे न्यूज़ जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है कि आवारापन 2 जो इमरान हाशमी की अभी की मोस्ट अवेटेड मूवी कही जा रही है, जिसे कुछ लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल प्यार नहीं दे रहे, कुछ लोग इमरान हाशमी के फ़ैन हैं इसीलिए उसे प्यार दे रहे हैं। सो आवारापन 2 जो है उसके गाने से प्लेबैक सिंगर में अरिजीत सिंह जो है वो कम बैक कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आवारापन का जो टाइटल ट्रैक है वो अरिजीत सिंह जो है वो गाने वाले हैं एंड उससे कमबैक कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जनवरी 2026 में, यानी इसी साल जनवरी में जो है वो अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था प्लेबैक सिंगिंग से। यानी उन्होंने कहा था कि यार मैं तो देखो अब नहीं गाना चाहता हूँ मूवीज़ में, प्लेबैक सिंगिंग में नहीं करूँगा। और ये भी कहा जा रहा था कि जो सलमान खान की एक मूवी है जिसमें उन्होंने गाना गाया था एंड सलमान भाई ने बहुत ही गंदी लिपसिंग करी थी, उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया था, लेकिन अब इमरान हाशमी की मूवी से वो कमबैक कर रही है। सो लेट्स सी, लेट्स होप क्या कहना है, बिकॉज अरिजीत सिंह की मैनेजर का तो ये कहना है कि यार ये सब र्यूमर्स हैं, अभी ऐसा कुछ भी फाइनल नहीं है, तो हो सकता है कि ये मूवी को हाइप करने के लिए जो है र्यूमर्स फैलाए जा रहे हो, हु नोज, जब भी होगा तो आपको पता चल जाएगा, मैं सबसे पहले आके बताऊंगी। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आरआर आपके रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए। बाकी ये बहुत अमेजिंग अमेजिंग खबरें और आपके लिए लाने वाली हूँ मैं, सो स्टे ट्यून्ड रहो और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं.

पूरा गाना बहुत अच्छा बना दिया इन्होंने, लेकिन ये मोहब्बत मोहब्बत लास्ट में जिस टोन में डाला है ये बोल के सारा काम खराब कर दिया इन्होंने। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ मैं लाइफ मस्त है। अब देखिए यार, लाइफ मस्त है पे जो है हम कई बार बहुत अमेजिंग अमेजिंग बातें जो है वो करते हैं, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें स्पेन ने जो है फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब उसकी टीम बाहर निकल रही थी तो एक प्लेयर जो है वो हाथ में ट्रैश बैग यानी जो एक पॉलिथिन बैग होता है उसमें ट्रॉफी रख के ले जाते हुए दिखा है, और इस पे लोग जो है ओ माय गॉड क्या तो डिबेट कर रहे हैं कि इज्जत नहीं है इन्हें उस ट्रॉफी की, ये कैसे लेकर जा रहे हैं ट्रैश बैग में। ब्रो ब्रो मैं सच बताना चाहती हूँ कि जब जो है आपको कुछ नहीं मिलता है ना मतलब कैरी करने के लिए, तो जो पहली चीज हाथ में आती है वो आप उठा के ले जाते हो। आज मेरे साथ ही हुआ, सुबह जो है मेरा एक बहुत ही एक्सपेंसिव दुपट्टा है वो मुझे कैरी करना था, तो मुझे कोई अच्छा पेपर बैग या क्लॉथ बैग या कुछ भी नहीं मिल रहा था, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसको पूरे टाइम हाथ में लेकर जाऊं, तो मुझे जो है एक पुरानी सुपर मार्केट की गुचुड़ मुचुड़ हुई हुई जो है एक पॉलिथिन बैग मिली, मैंने उसमें अपना एक्सपेंसिव वाला दुपट्टा रखा एंड बहुत सेफ्टी से रखा है वो। मतलब अगर मुझे कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा सेफ्टी से जो है रख के कहीं लेके जानी है ताकि लोगों का अटेंशन उस पर ना पड़े, मैं ट्रैश बैग में उसको डालने के लिए तैयार हूँ। तो जितने भी लोग जो है मजाक उड़ा रहे हैं स्पेन की टीम का, मैं तो देखो आपके सपोर्ट में नहीं हूँ। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सच पर, इसे इंजॉय कीजिए। बाकी आपकी कशिश के साथ जो है कहते रहिए जियो बिंदास।

0: गारंटी 26 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी। नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट। बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद राइट। दानादल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर। सुख वाकिफ अलखोर।

मूवी का नाम जुग जुग जियो, गाने का नाम रंग सारी, आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो आरएफएल। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी गर्ल्स और शो, आप मेरे साथ इंजॉय कर रहे थे, लाइव मस्त है। हाँ जी, इंजॉय कर रहे थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय बोलने का। सो मैं यहाँ से चलती हूँ, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, हाइड्रेशन का क्योंकि पूरा ध्यान रखना है, एंड साथ में सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। जितने भी आईफोन यूजर्स हैं उनको तो उनका फ़ोन ही जो है वो याद दिला सकता है कि यार सनस्क्रीन कब कब लगानी है। सो फिलहाल एक फ्रेश टाटा बाय बाय करते हुए मैं यहाँ से निकलती हूँ और एक फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आपकी नज़र करते हुए जा रही हूँ। सो स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास, टाटा बाय बाय, टेक केयर।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Ranveer Singh. Radio. Stay tuned.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Radio Olive, I'm number one.
4: Olive Music Marathon. Ek ghanta, non-stop back to back gaane.

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Olive Music Marathon. एक घंटा non-stop back to back गाने।

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव.
1: जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
3: मॉर्निंग्स एंड नाइट.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। ये है ऑलिव रिचार्ज और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की पीटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए सफर के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में, कहानियों के बारे में, किस्सों के बारे में और खबरों के बारे में, साथ साथ गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे और आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो बातों का सिलसिला मैं शुरू करूंगा, मगर आप मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। उसके साथ साथ आज क्या ऐसा किया कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, डिटेल में मैसेज कीजिए मुझे। फिलहाल यही बताते हुए हम जरा किक स्टार्ट करते हैं आज के ऑलिव रिचार्ज को और कहते हैं जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव. राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम. जियो बिंदास.
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे क्रिकेट से जुड़ी एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और एक ट्रिविया शेयर करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 1975 में शुरू हुआ था, तो मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी आई कि भाई सबसे पहला सेंचुरी किसने लगाई होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंचुरीज की सेंचुरी तो सचिन रमेश तेंदुलकर ने लगाई है, मगर फर्स्ट सेंचुरी वर्ल्ड कप में किसने लगाई है, ये थोड़ा मैं क्यूरियस हो गया था। तो मैं ढूंढने गया और मैंने ढूंढ निकाला कि इंग्लैंड के डेनिस अमिस ने जो है सबसे पहली सेंचुरी लगाई थी। 137 रन उन्होंने स्कोर किए थे, इंडिया के खिलाफ किए थे लॉर्ड्स में 147 बॉल्स में। और उसी दिन ही न्यूजीलैंड के ग्लेन टर्नर ने भी एक सेंचुरी स्कोर किया, 171 नॉट आउट रहे वो ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ। और अगर हम T20 फॉर्मेट की बात करेंगे तो T20 वर्ल्ड कप का सबसे पहला सेंचुरी स्कोर किया था, गेस कीजिए, आपके मन में नाम आ गया होगा, क्रिस गेल ने। जी हाँ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ September 11, 2007 को। तो सेंचुरीज के बारे में हम जानते हैं कि बड़े बड़े सेंचुरीज लोगों ने लगाए, मगर सबसे पहला सेंचुरी वर्ल्ड कप में किसने लगाया, ये क्यूरियस बात मेरे दिमाग में आई तो मैं ढूंढ के निकल गया। आपको पता था इस बारे में? अगर हाँ तो मुझे बताइए 3311063 पर। अगर नहीं पता था तो भी बता दीजिए, कोई गल नहीं भाई, मुझे भी नहीं पता था, मैंने ढूंढ के निकाला है। तो ये बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे भाई मेरे पास एक मैसेज आया है। मुझे कपिल जी ने मैसेज किया है, उन्होंने बोला है कि सुदेव आई हर्ड अबाउट योर स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड कप, इट वाज रियली गुड एंड आई वांट टू टेल यू दैट द फर्स्ट सेंचुरी फॉर इंडिया इन वर्ल्ड कप वॉज स्कोर्ड बाई कपिल देव। कोइंसिडेंटली आई शेयर हिज नेम करके उन्होंने मुझे मैसेज किया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच ये मैसेज मुझे करने के लिए, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। और ये बिल्कुल सही बात बताई आपने, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में सबसे पहले सेंचुरी कपिल बाजी ने मारा था। 175 रन्स उन्होंने स्कोर किए थे 138 बॉल्स में। लेजेंडरी नॉक था वो, लेजेंडरी नॉक। जिन लोगों ने 83 मूवी देखी है उनको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। जून 18th को 1983 में टर्नब्रिज वेल्स में इंग्लैंड में उन्होंने ये सेंचुरी स्कोर किया था। और ये सेंचुरी जो था एक रेस्क्यू एक्ट था, क्योंकि इंडिया बहुत ही बुरे कंडीशन में था। 17 रन में 5 विकेट गिर चुके थे जब वो आए थे। उसके बाद जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: डॉक्टर ऑन एयर, डॉक्टर ऑन एयर, ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर।
3: Hi, I'm Dr. Sara Ali from Nasim Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
2: Dr. On Air, Dr. On Air, brought to you by Nasim Healthcare.
4: Only laga aur ho ja recharge.
5: Olive Recharge.
0: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
5: Olive Recharge.
2: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा आने वाले फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो आप सोचोगे कि भाई पहले जो चल रहा है वो तो खत्म होने दो, मगर नहीं, आने वाला फीफा वर्ल्ड कप और ज्यादा स्पेशल है जो 2030 में होने वाला है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप के 100 साल हो रहे हैं एंड स्पेशल सेलिब्रेशन भी हो रहे हैं। तो फीफा वर्ल्ड कप 2030 जो 3 कॉन्टिनेंट्स में 6 डिफरेंट कंट्रीज होस्ट कर रहे हैं, अभी तक का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है और ये June 8 से लेके July 21 तक होगा। इसमें खास बात यह है कि एक तो 100th year anniversary सेलिब्रेशन होगी जो उरुग्वे में होगा, क्योंकि उरुग्वे में 1930 में सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। इस टूर्नामेंट के जो मेन होस्ट हैं वो है स्पेन, पोर्चुगल, मोरक्को। उसके साथ साथ जो सेंटेनरी होस्ट हैं वो है उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे। ये 6 होस्ट जो हैं क्वालिफाई कर जाएंगे विदाउट एनी मैचेस। उसके साथ साथ 8 तारीख और 9 तारीख को सेंटेनरी सेलिब्रेशंस भी होने वाले हैं। डिटेल तो हम बाद में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि और भी डिटेल्स आएंगी धीरे धीरे धीरे आने वाले सालों में। अभी तो 4 साल बचे हैं भाई, बहुत वक्त है। फिलहाल यही बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: अब ले लगा और हो जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज।
4: ओलिव रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर। जियो बिंदास।
3: ओलिव रिचार्ज।
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। भाई यहाँ पे हम थोड़ा फिटनेस के बारे में फोकस करना चाहेंगे, एक फैक्ट बताना चाहेंगे एक मिथ को ब्रेक करते हुए। ठीक है, मिथ ये है कि लाइट एक्टिविटी के दौरान माउथ ब्रीदिंग और नेजल ब्रीदिंग दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, क्या सही में ऐसा है या नहीं है? फैक्ट ये कहता है कि रिसर्च के अनुसार लाइट एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या इजी साइकिलिंग के दौरान नाक से सांस लेना जनरली ज्यादा बेनिफिशियल होता है। नाक सिर्फ हवा का रास्ता नहीं बल्कि एक नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह भी काम करता है। अब नेजल ब्रीदिंग के दौरान हवा फिल्टर होती है जिससे डस्ट और एलर्जेंस जो है वो काफी हद तक रिमूव हो जाते हैं। एयर लंग्स तक पहुंचने से पहले वार्म और ह्यूमिडिफाई हो जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो एयर फ्लो और ऑक्सीजन एक्सचेंज को भी सपोर्ट करता है। इसके ऑपोजिट माउथ ब्रीदिंग हवा को बिना किसी नेचुरल फिल्टरिंग और कंडीशनिंग के डायरेक्ट लंग्स तक पहुंचाती है। इसी वजह से क्रॉनिक माउथ ब्रीदिंग से माउथ ड्राइनेस और थ्रोट इरिटेशन का रिस्क भी बढ़ सकता है। ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के दौरान बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। ऐसे टाइम पर माउथ ब्रीदिंग नेचुरली इंक्रीज हो सकती है और ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। मगर लाइट एक्टिविटीज के दौरान अगर आप माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं तो उसका नेजल ब्रीदिंग जैसा इफेक्ट नहीं होता। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई, एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने कुछ टाइम से जो है अपने पोस्ट में, साथ ही साथ अपने फीड में एक स्टोरी में, एक्चुअली पोस्ट में नहीं, मैंने एक रील शेयर की थी उसके साथ साथ। भाई, कई बार मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स के फीड में भी ये रील आ चुकी है, जहाँ पे पुराने मूवीज़ में ऐसे सीन आते हैं ना, जहाँ पे हीरो पहले गरीब होता है, फिर अमीर हो जाता है, और जो उसको तंग करते हैं उससे वो रिवेंज लेता है। उसके बाद एक शेर आता है, और बहुत ही प्यारा शेर, मतलब वो पढ़ के एकदम से मज़ा आ जाता है मुझे, ठीक है, और एकदम ऐप्ट तरीके से फिट करता है। और इसी शेर के बारे में जयदीप अहलावत ने भी बोला है कि किसी दिन जब अपना बड़ा सा मकान बनाऊंगा तो उसके सामने मैं लिखूंगा, और वो शेर है, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। यार ये भाई जो एटीट्यूड दे देते हैं ना पढ़ने वाले को या फिर सुनने वाले को, कि मजा आ जाता है। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई, एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाना चाहूंगा एक प्लेयर के बारे में जिसने एक ही क्लब में 25 साल तक खेला, और सिर्फ 25 साल तक खेला ही नहीं, उसने उस लीग में डोमिनेट किया एज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स फुटबॉल हैज एवर सीन। ये एक ऐसा प्लेयर था जिसने इनिशियल टाइम पे रोनाल्डो को ये भी सिखा दिया कि भाई तुम्हें और भी बहुत कुछ सीखना है। ठीक है, ये थी एसी मिलान की वो पीक टीम जिससे सब खौफ खाते थे, सब डरते थे इनसे खेलने के लिए, क्योंकि इनका डिफेंसिव लाइनअप, स्पेशली एक प्लेयर जो पूरा गेम जो है कंट्रोल करता था। सी, हम सब जानते हैं कि इटालियन लीग जो है काफी डिफेंसिव लीग है, उसमें इनका नाम बिल्कुल ऊपर आता है। मैं बात कर रहा हूँ पाओलो मालदीनी की। ठीक है, पाओलो मालदीनी एसी मिलान में 25 साल तक खेले, स्टार्टिंग भी उन्होंने वहीं से की, करियर का एंड भी वहीं से किया। काफ़ी लॉयल रहे एसी मिलान के लिए, एसी मिलान के लिए बहुत बड़े बड़े लॉरेट्स भी उन्होंने जीते। और एक छोटा सा किस्सा उनके लाइफ से मैं शेयर करना चाहूँगा जो स्पोर्ट्स फैंस के लिए बहुत शॉकिंग था, एसी मिलान के टीममेट्स के लिए शॉकिंग था, और जो ओपोनेंट टीम आई थी वहाँ पे खेलने के लिए उनके लिए भी शॉकिंग था। जब पाओलो मालदीनी अपने फाइनल मैच के लिए मिलान में जब खेलने गए सैन सिरो स्टेडियम में रोमा के खिलाफ, तो उनके फैंस में से एक सेक्शन ऑफ फैंस जिनको द करवा सुट बोला जाता है, वो इनके खिलाफ बू करने लगे, इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करने लगे।

और सारे लोग शॉक हो गए थे कि ये क्या हो गया। लेजेंडरी प्लेयर भाई, कप्तान एसी मिलान का, 25 साल से एसी मिलान में बंदा खेल रहा है, एक सेक्शन ऑफ फैंस इन्हें बू क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे थे, इसके बारे में बताऊंगा आपको थोड़ी ही देर में। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Jackman की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या अगले मिलीनियर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव एंड विन।
3: हेलो नमस्कार मम्मा मिया मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव।

0: is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम बात कर रहे थे पाओलो मालदिनी के लास्ट मैच के बारे में जो एसी मिलान में उन्होंने खेला, एसी मिलान के लिए सैन सिरो स्टेडियम में मई 2009 को, जहां पे एक सेक्शन ऑफ फैंस स्पेशली द कर्वासर्ड वो इनके आते ही बू करने लगे थे, एक डिस्प्यूट के कारण हुआ था। बेसिकली 2005 के चैंपियंस लीग के फाइनल में जब वो हार गए थे, काफी अच्छी लीड रखने के बाद एसी मिलान जो है हार गई थी, और फैंस भी बहुत डिस्टॉर्ट थे, वो बोल रहे थे कि यार ये क्या हो गया, एंड एवरीबडी सेड कि यार कैप्टन को जो है थोड़ा ये करना पड़ेगा। तो प्रेस मीट में पाओलो मालदिनी ने बोला कि यार हमने पूरी कोशिश की, बहुत कोशिश की, दे प्लेड वेल और वो जीत गए, नॉर्मल सी बात है, मगर तो करवा सर्ट सपोर्टर्स जो थे उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, कैप्टन को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो पाओलो मालदिनी ने बोला, देखो मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए लायबल भी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी बात सुनने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर ये लोग बोलेगे, अच्छा बेड़ा ऐसा हो गया है, हमारे सपोर्ट के कारण तुम फेमस हुए, हमारे सपोर्ट के कारण तुम फेमस होने के बाद रिच बने, और हमारे साथ ऐसे बात कर रहे हो। तो ये एक डिस्प्यूट रहा था, उस डिस्प्यूट का एंड देखा हमने 2009 को, उनके लास्ट मैच जो सैन सिरो में वो खेल रहे थे। इसके बाद भी उन्होंने एक मैच खेला जो उनके करियर का लास्ट मैच था, एंड मैच था, मतलब मिलान में सैन सिरो स्टेडियम में उनका लास्ट मैच था, और उस एक एक्शन के कारण सब लोग शॉक हो गए थे, जो उनके फैंस थे शॉक हो गए थे, साथ ही साथ जो टीममेट्स थे वो भी शॉक हो गए थे कि भाई ये क्या चल रहा है, काका तो ऐसे देख रहे थे कि भाई हो क्या गया, कैप्टन के खिलाफ ये लोग क्यों बू कर रहे हैं। एंड इवन रोमा प्लेयर्स जो खेलने आए थे वो तक शॉक्ड थे कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, मगर उस सेक्शन ऑफ फैंस को छोड़ के पूरे स्टेडियम ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, चीयर किया उनके लिए। इससे मैं यही बोलना चाहता हूँ, यार देखिए जिंदगी में कितना भी हम बड़ा कर ले, कुछ लोग शायद हमें ना पसंद करें, मगर उन छोटे लोगों से या फिर उस छोटे सेक्शन ऑफ लोगों के कारण आप अपनी खुशियों को, अपने ड्रीम्स को या फिर अपने मेहनत को कभी भी कम मत समझिएगा। बी लाइक पाओलो मालदिनी, क्योंकि उन्होंने अपने लेगेसी को डिफेंड किया वहां पे। तो यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
4: एलकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
5: ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई अपना फोन निकालिए, ठीक है, उसके बाद उसमें इंस्टाग्राम का ऐप खोलिए, उसके बाद सर्च ऑप्शन में जाइए, रेडियो ओलिव डॉट क्यूए सर्च कीजिए, और जैसे ही पेज खुलेगा आप उस पर देखिए फॉलो किया कि नहीं। अगर किया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं किया तो फॉलो कीजिए, एक ही बार उस फॉलो बटन पे प्रेस कीजिए और हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए। देखिए जो भी कंटेंट हमने डाले हैं, आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, फीडबैक हमें दे सकते हैं, डीएम कर सकते हैं हमें, उसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स या फिर जो भी आपके खास लोग हैं जो आपके मुल्क में या फिर वर्ल्ड में कहीं पर भी हैं, उनको आप हमारे ऐप के बारे में बता सकते हैं, ताकि वो भी जहाँ पर भी वो हैं वहाँ बैठे बैठे हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सके। तो उनको बताना है कि सीधा ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो ओलिव का ऐप सर्च करें, डाउनलोड करें और इस जर्नी में आ जाए यार हमारे साथ। क्या कर रहे हैं ऐसे, है ना? तो यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
3: लगा और हो जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: ओलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

तो भाई टाटा बबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि हमारा टाइम यहाँ पे खत्म होने वाला है, 5 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे जो है आपके साथ सिमरन गुफ्तगू करेगी, तो खुली बाहों से सिमरन का स्वागत कीजिएगा। जितना प्यार हमें दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार सिमरन को दीजिएगा। जाते जाते जाते यही याद दिलाना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं था आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
4: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
3: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 reals growth पर पाइए एक coupon.
4: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
3: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

पता है बड़ी खूबसूरत चीज क्या होती है कि जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो भी आप ही का इंतजार कर रहा हूँ मैं क्या चीज सुनियो कितना दिखी हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल लेकिन ये शो वाले केस में जबरदस्त केस मतलब जबरदस्त इवनिंग्स वाले केस में मुझे लगता है जितना इंतजार मैं आपका करती हूँ उतना इंतजार आप

उठा के ले जाओगे? देख लो किसको आप चैलेंज कर रहे हो। ऑल राइट, सिमरन कौर आ चुकी है। बताओ कैसा रहा आपका आज का दिन। 3311106 पर आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ। फटाफट से

आपके वाली आपके ऊपर मरे ना मरे, मैं जरूर मरती हूँ यार, आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, वो भी 100 किलो वाला। तो पूरे दिन में आपको दिन ने कितना प्यार दिया। एंड गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेजने के लिए नंबर वही है 3311063। मुस्कुराओ यार, आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हो।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Time check. Time check. Brought to you by Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhor.
2: 5:10.
0: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
3: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million rials cash prizes.
0: Jeetne ke char raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 rials growth par paiye ek coupon.
3: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
0: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 mahine regular salary par paiye ek extra coupon aur mega draw ticket.
4: Shackman ki power packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa, sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
5: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
6: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव पे।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
8: आरजे सिमरन के साथ
9: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ
10: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जॉय अलकास। जॉय अलकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
11: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: जी एक नंबर आज किसी एक नंबर इंसान का हैप्पी वाला बर्थडे है और इनको बर्थडे विश करने से पहले हैप्पी वाला बर्थडे अलिन हालैंड जो है वो आज अपने बर्थडे पे बहुत सारे विशेस का रिप्लाई कर रही है, कमेंट्स पे जो है बहुत सारे रिप्लाई आ रहे हैं। सो एक बंदे ने रील पोस्ट की कि भाई मैं ना 20 केजी जो है वो 3 महीने में लूज करूंगा अगर हालैंड इस पे कमेंट करता है। तो उसने कमेंट कर दिया यार, सो आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हो, हालैंड को विश करो और यू नेवर नो कि वो रिप्लाई भी कर ले। भाई बड़े कमाल के बंदे यार, मेरे को पहले इतना नहीं पता था, जब से थोड़ा बहुत फुटबॉल देखने लगी, ये वर्ल्ड कप देखने लगी, उसके बाद हालैंड के बारे में मैंने पढ़ा, हालैंड को मैंने खेलते हुए देखा, अमेजिंग है यार।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alucas. Joy Alucas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: तो सही है दोस्त। स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं यार। आजकल ना बड़े ड्रामे हो गए हैं। जब आप मार्केट में ब्रेड वगैरह खरीदने जाते हो तो हम सब भैया हेल्दी खाएंगे, एकदम होल व्हीट ब्रेड खाएंगे, ये व्हाइट ब्रेड नहीं खाना, ये नहीं खाना, सबके अपने अपने चल रहे होते हैं। इनफैक्ट जब मैं भी ब्रेड खरीदने जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि भाई मेरे को ऐसा होल व्हीट जो है वो ब्रेड चाहिए जिसमें सीड्स हो, तो और भी ज्यादा दिखने में जो हेल्दी लगता है। बहुत सारे लोग जो है अपने घर पे भी ब्रेड जो है बनाने लगे हैं, उनको लग रहा है कि बाहर वो किसी तरह की भी ब्रेड बेचते हैं, कोई भी नाम दे के किसी भी तरीके का, है ना। सो हेल्दी ब्रेड जो है वो भी लोग बनाने लगे हैं। बट एक चीज जो है वो बहुत सारे लोगों में कॉमन है, जो कि कभी कभार मैं भी करती हूँ, जो कि बहुत गंदी आदत है, वो नहीं करनी चाहिए। वो ये है कि जब भी हम लोग ब्रेड खाते हैं उसमें जो वो ब्राउन एजेस रहती है ना, वो हम नहीं खाते हैं, वो साइड में निकाल के रख देते हैं। सो जो ब्राउन एजेस हैं वो भी तो ब्रेड ही है, बट वो वेस्ट हो रहा है। सो पहले मैं आपको वापस दौड़ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी इस चीज़ के बारे में। सो आप बताइए उससे पहले कि आप में से कितने लोग हैं जो कि ब्राउन जो एजेस होती हैं ब्रेड की वो नहीं खाते हैं, वो फेंक देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं खानी है यार। 3311063 पर आप मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं। मैं करती हूँ लेकिन बहुत कम करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं बोलती कि हाँ नहीं नहीं मैं तो ऐसी मैं बहुत अच्छी हूँ, नहीं, मतलब कभी कभार मैं भी करती हूँ, जो कि बहुत गलत बात है, नहीं करनी चाहिए।
1: मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना।
0: 3311063 पे भेज देना।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu,

राहत साहब की आवाज मेरे ब्रदर की दुल्हन से। यार ये इश्क है, इश्क में दिल है।

क्या फिसला लोग कहते हैं लड़की फिसल गई। बात कर रहे थे कि ये जो ब्रेड है उसकी ब्राउन एजेस रहती है, बहुत सारे लोग जो उसको खाते नहीं उसको ऐसा साइड में करके छोड़ देते हैं, तो इसका वेस्ट जो है वो ना हो, जवान ने एक ऐसी मिल्क ब्रेड जो है सॉफ्ट व्हाइट क्रस्ट वाली जो है वो ब्रेड क्रिएट की है, जिसमें आपको क्रस्ट नहीं दिखेगा, एकदम सॉफ्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि ना तो वो आपको ब्राउन एजेस दिखेंगी जिसको आपको साइड कर देना है और उसको खाना नहीं है, तो इस तरह से फूड वेस्ट जो है ना वो रिड्यूस होगा, जो कि बहुत ही गलत बात है। इनफैक्ट मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आपकी आदत है कि आप लोग जो है वो ब्रेड के एजेस जो हैं वो ब्राउन वाले वो फेंक देते और नहीं खाते हैं, तो वेस्ट मत करो यार। इनफैक्ट जब पिज्जा खाते हैं उसकी एजेस भी बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, वो तो कभी कभी मैं भी छोड़ती हूँ यार, जो कि गलत बात है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
2: एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
3: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.

0: सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे।
1: टाइम चेक, टाइम चेक, ब्रॉट टू यू बाय नैनीताल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर, सुकवा के अलखोर।
0: हां जी मैं कह जी सुन रहे हो किदा दी हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े नाल। थैंक यू सो मच, आपको म्यूजिक अच्छा लग रहा है, मेरी बहुत ही अच्छी लग रही है। ऐसी बातें करके तो मुझे थोड़ी सी शर्म आ जाती है जब आप इतनी तारीफ करते हो, लेकिन कर दिया करो, डजंट मीन कि मैं शर्मा जाती हूं तो तारीफ नहीं करोगे। जब भी मन करे 3311063 पर आप मुझे बता दिया करें कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो मौसम की अपडेट में वैसे आप सब लोग मौसम के लिए अपडेटेड हो ही, लेकिन फिर भी 42 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 42 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 46 डिग्री था, ह्यूमिडिटी कल से कम है 27%, विंड जो है 22 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। तो सी एनी रफ्तार दे नाल कितने जा रहे हो, थोड़ा जा रुक जाओ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alcor.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
5: हाय एवरीवन, दिस इज बेनी दयाल हियर,
6: बेनी दयाल हियर,
5: ओलिव रेडियो 106.3, जियो बिंदास, जियो बिंदास।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
7: रेडियो ओलिव, हम नंबर वन।
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
9: आरजे सिमरन के साथ।
10: Zabardast evening, make you drive golden with.
11: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
12: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.
13: Just

0: हम लोग ना कभी कभी अपने फोन में इतने ज्यादा बिजी हो रहे होते हैं, और फोन पे जब बात करते करते आप कोई काम कर रहे होते हो तो वो काम हर बार सही नहीं होता, क्योंकि आपका सारा दिमाग फोन में ही लगा रहता है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये बात है। तो एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक मम्मी ने अपने बच्चे को पकड़ा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, उसको पकड़ा हुआ है और वो फोन पे कंटिन्यूसली बात कर रही है, और उसने फ्रिज खोला है और फ्रिज में बच्चे को रख दिया और बंद कर दिया है। एग्जैक्टली ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, बट मैं इसके बारे में पढ़ रही थी कि ये जो है वो एक्चुअली फेक वीडियो है, ये एक्चुअली क्रिएट की गई है, स्क्रिप्ट की गई है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो ये वीडियो को वायरल बनाने के लिए स्क्रिप्ट किया गया, क्योंकि आजकल आपको पता है कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो कुछ भी करेंगे किसी भी तरीके तक, मतलब किसी भी हद तक जो है वो जाते हैं। पहले मुझे ऑनेस्टली लगा था कि ये वीडियो बिल्कुल सही है, बट यस, जब मैं अब इसके बारे में और गहराई में पढ़ रही थी तो मुझे पता लगा कि ये जो वीडियो है वो फेक एंड स्क्रिप्टेड है। लाइक क्या कर रहे हैं यार?

0: गेट इट, जब हम यू नो बिजी होते हैं, फोन पे होते हैं, तो कभी कभी कार की चाबियां या कुछ और चीज जो है हम अपने फ्रिज में रख देते हैं, पर्स रख देते हैं, है ना, या फिर अपने ड्रॉर में जाके आप कुछ ग्रोसरी रख दोगे, वो चीज तो, लेकिन बच्चा, सीरियसली गिव मी अ ब्रेक यार. सुनते रहो रेडियो ऑलिव को, कहते रहो जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.
0: बहुत प्यारा गाना यार, प्रभ गिल दी आवाज दे विच, तेरियां दीदा, मतलब जब आपकी

0: Olive 106.3 FM Gio Bindas. Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alucas. Joy Alucas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: एलकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: तेरा यार हूँ मैं भी आपकी यार हूँ यार, ये गाना हमेशा इमोशनल करता है यार। क्या चीज है ना यार दोस्ती भी।
1: क्या
0: बोलते हो, वीकेंड के आने से पहले वीकेंड का माहौल चाहिए, एलो चक्को। कुछ ही कदम दूर है हम वीकेंड से। कल देखा जाए तो वेंसडे है, थर्सडे को तो हम वीकेंड की तरह कंसीडर करते हैं। ऐसे ही मैं आपको मोटिवेशन दे रही थी, अगर आप अपने आप को अपने ऑफिस के काम से थका रहा फील कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं यार वीकेंड कब आएगा, तो मैंने आपको थोड़ी सी मोटिवेशन दे दी है। और मोटिवेशन आपको मैं डेट्स खरीदने की भी दे दूंगी, क्योंकि वीकेंड पे जो है वो आपको डेट्स खरीदने का मौका जो है वो मिलने वाला है, और वैरायटी ऑफ डेट्स जो है वो आपको मिलने वाली है। सैटरडे से ये एक्चुअली स्टार्ट होने वाला है। मैं लोकल डेट्स फेस्टिवल के बारे में बात कर रही हूं, जो कि सूक वाकिफ में स्टार्ट होने वाला है। 25 तारीख से लेके 10 अगस्त तक ये चलने वाला है। सो या इसका फायदा ये है कि आपको जो लोकली फ्रेशली हार्वेस्टेड लोकल डेट्स जो है ना वो मिलती है, उसमें इतनी सारी वैरायटीज होती हैं एंड रेट भी बड़ा अच्छा मिलता है, तो लोकल को सपोर्ट करना चाहिए ऑफ कोर्स। टाइमिंग जो है वो मैं इसकी आपको बता देती हूँ, संडे टू थर्सडे जो है वो इसकी टाइमिंग रहने वाली है, शाम 4 से लेके रात के 9 बजे तक, एंड फ्राइडे एंड सैटरडे के बीच में इसकी टाइमिंग 4 से लेके 10 बजे तक है, तो आपको एक घंटा जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा वीकेंड के टाइम पे। सो या सिमरन कौर आपके साथ, मैं जी चको ते को जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ। विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
4: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: रहे हो दोस्त, बताओ ना।
1: डबल 3 डबल 1 1063 पे बता दो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
2: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
4: Hi guys, this is Abhar Shetty Khurana, and you are listening to Radio Olive.

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: मैं पहले इस गाने में पता क्या बोलती थी, बहुत देर तक मैं इस गाने के रॉन्ग लिरिक्स गाती थी। थी कि अच्छा इंडिया जानता है हम तुम पे मरता है, सो इट्स अखा इंडिया जानता है। सो मैं बहुत देर तक इसके रॉन्ग लिरिक्स गाती रही थी और मैं सामने वाले को बोलती थी अरे अच्छा बोल रहा है अखा क्या होता है, पता ही नहीं था यार। 7:22:42 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है, सिमरन कौर आपके साथ है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। इस फिल्म के बारे में बताऊं, जान तेरे नाम फिल्म के बारे में आज ट्रिविया शिविया में बात करें। सो रोनित रॉय जो कि इस फिल्म में थे, तो डायरेक्टर ने उनको बोला, डायरेक्टर दीपक बलराज ने, कि भाई तू बहुत ज्यादा मैच्योर लगता है तो थोड़ा सा वेट लूज कर ले उस फिल्म के लिए। तो उन्होंने वेट लूज किया था। इस फिल्म को करने के लिए रोनित रॉय को 50,000 रुपीज मिले थे, वो भी इंस्टॉलमेंट में, 4-5 इंस्टॉलमेंट थी वो, यू नो उसमें उनको ये पैसे मिले थे। एंड फर्स्ट डे इस फिल्म, जी जो फिल्म थी वो कम से कम 1.8 करोड़ के बजट में जो थी वो बनी थी। फर्स्ट डे की कलेक्शन इसकी 7 लाख की थी, फर्स्ट वीक की कलेक्शन इसकी 72 लाख की थी। एंड जो इंडिया की बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन की बात करें 2.40 करोड़ थी, एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो थी वो इसकी 3.20 करोड़ थी। तो ये फिल्म जो थी वो हिट थी, मज़ेदार थी। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जान तेरे नाम फिल्म जो है वो ज़रूर देखिएगा। बस ज़्यादा ऐसा दिमाग लगा कि इसे गलतियों मत निकालना, बट मज़ेदार फिल्म है। और क्या मज़ेदार कर रहे हो आप लोग, मैंने आपसे पूछा था कि ये क्या टाइम हो रखा है, ये टाइम खाने पीने का तो नहीं है, इस टाइम पे थोड़ा सा आप मंचिंग वंचिंग करते हो, सो क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो?
1: हाय सिमरन,
0: हेलो,
1: गुड इवनिंग,
0: वेरी गुड इवनिंग।
1: मैं दोहा में घूम रहा हूँ और अभी रेडियो ऑन किया, आपकी आवाज़ सुनने को मिली है।
0: How sweet.
1: तो आपकी आवाज़ सुनने के बाद काफी एनर्जी फील हो रही है।
0: थैंक यू।
1: तो आपकी आवाज़ से काफी एनर्जी मिलती है, आप भी माशाल्लाह हमेशा एनर्जी में रहती हैं। ऐसी एनर्जी में रहें और हमें एंटरटेन करती रहें।
0: बिल्कुल, और आप लोग सुनते रहो यार, और बताओ जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं क्या कर रहे हो यार, आप बताओ इसी तरह से फैजल जी की तरह 3311063 पर रियलिटी चेक लेके आती हूँ थोड़ी देर में।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: भी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: रहे हो कितना की हाल चल सत्याकाल सिमरन कौर आपके साथ। यार थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या कर रहे हो यार, आप लोगों ने मतलब लड़ी लगा दिया, ढेर लगा दिया मैसेजेस का।
1: हाय सिमरन, हाउ आर यू?
0: गुड।
1: फिर रहे हैं ड्यूटी पे अभी, ठीक है। सारा दिन सुनते हैं रेडियो, बट जो आपकी आवाज है वो किसी की नहीं। आपकी आवाज सुन के बड़ा जो अच्छा लगता है। आपको सेहत तंदुरुस्ती और फिट फाट रखे ऐसी आप
2: यार
0: बड़ा दिल खुश हो जाता है जब आप लोगों की इस तरह से मैसेजेस मैं सुनती हूँ। चलो अभी थोड़ा वो काम करते हैं जिसको करने में बड़ा मजा आता है मुझे।
3: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: या कभी आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा इंसान देखा है? मैंने मेरे आसपास देखा, आपने भी आपके आसपास देखा होगा कि उसको हर कोई पसंद करता है, हर इंसान उसको पसंद करता है। मतलब ऐसा है ही नहीं कि कोई इंसान उसको ना पसंद करे। तो मैंने एक चीज पढ़ी आज, कहते कि अगर सबको पसंद आ गए तो इंसान ही खराब हो तुम। क्योंकि इंसान जो है ना, इंसान के पास देखो यार, अच्छा है तो आप बुरे भी हो, आपका गुस्सा बुरा हो सकता है, कभी कभी आपके बात करने का तरीका जो है वो गलत हो सकता है, आपका समझाने का तरीका गलत हो सकता है। हर इंसान फ्लॉज लेके जो है वो पैदा होता है। सो हर एक इंसान के पास ऐसी कुछ होती है कमियां जो कि उसको कंप्लीट नहीं करके इनकम्प्लीट बुलाती है। तो हम सब कंप्लीट नहीं है, अपने आप में हम सब में थोड़ी थोड़ी खामियां हैं। लेकिन अगर आपको सभी पसंद कर रहे हैं तो भाई मतलब कोई आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, किसी को पता ही नहीं आपके बारे में, खराब हो तुम यार। सो लोग अगर आपको आपकी कुछ चीजें ना पसंद करते हैं या आपको ना पसंद करते हैं कुछ लोग, इट्स ओके, इट्स फाइन। आप सबको पसंद नहीं आ सकते हो। जिनके लिए आप अच्छे हो, जिन जो आपके बुरे में भी आपके साथ काट लेंगे तो आप उन्हीं के साथ रहिए। जिनको आप अच्छे ही लगते हैं आप लाग अच्छे बन जाओ, नहीं अच्छे लग पाओगे आप, बढ़िया बात है अगर आप सबको पसंद नहीं आ रहे हो तो। वापस लौट के और भी मैसेजेस शेयर करती हूँ जो आप लोगों ने मुझे भेजे। 2-1 and go।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: प्यार तो होना ही था. आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, इतना पूछा था कि यार बता दो क्या कर रहे हो.
1: हाय सिमरन, वेरी गुड इवनिंग. मेरा नाम है विनायक और आप पूछ रहे थे कि आप कहाँ भटक रहे हो
0: जी.
1: तो मैं आपको कहना चाहूँगा, हम इंडस्ट्रियल एरिया से डेरिंग रोड जा रहे हैं, ना कोई ट्रैफिक ना कोई रश रोक चोक, आराम से ड्राइव करते हैं, बाकी सब एकदम बिंदास. सिमरन जी आप भी जियो बिंदास, जियो रेडियो.
0: थैंक यू सो मच. अरे इतने क्यूट हो यार. चलो अब नेम गेम खेल रहे हैं. अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम मुझे दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली, तो आपको अपने नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करने हैं 3311063 पर. जी हाँ, 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजिए. चलिए क्विकली मैं आप लोगों के नाम बोले स्टार्ट कर रही हूँ. साजिद, आसमा, शहबाज, मकसूद, पाली, बाबू, महबूब, मोहम्मद वसीफ जी, शहबाज गुल जी, विनायक जी, थैंक यू सो मच, मोहम्मद यूसुफ जी, थैंक यू सो मच, अदिल जट जी, थैंक यू सो मच, वाजिद जी, थैंक यू सो मच, फराह चांद जी, थैंक यू सो मच, निर्मल जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. विनायक ऑलरेडी नाम बोल चुकी है. फैजल जी, थैंक यू सो मच. बाजी, किसी ने बाजी लिखा है, ठीक है आपका भी जी. सुप्रिया जी, थैंक यू सो मच. खिजर हयात जी, थैंक यू सो मच. वसीफ जी, थैंक यू सो मच. सलमान खान जी, थैंक यू सो मच. शाकिब जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. इरफान जी, बहुत बहुत शुक्रिया. अगला गाना शुरू होने वाला है. साहिल जी, थैंक यू सो मच. बशीर जी, थैंक यू सो मच. परवेज जी, थैंक यू सो मच. परवेज अहमद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच. आयुर्दा, थैंक यू सो मच. मुझे बहुत प्यारा लगता है आपका नाम. आयुर्दा का मतलब बताइएगा आप मुझे लिख के. रनेंद्र जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. मंजू जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. करीना जी, करीना आप कपूर तो नहीं है. थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. एंड दैट्स इट फॉर नाउ. जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, अब आप लिखिए थैंक यू और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना दीजिए. अगले घंटे खेलते हैं हम एक चुटकी सॉन्ग.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: एलकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Alkhor.
2: Hi, this is Amitabh Bachchan, and you're listening to.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: बहुत ही प्यारा गाना है यार मैसेजेस के सिलसिले अभी तक भी चल रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो जब मैंने पूछा था आपसे तो आप लोग भेज रहे हो
1: हाय गुड इवनिंग मैं सिमरन थैंक यू अभी अभी ऑफ करके ना ड्यूटी से तो घर जा रहा हूँ अभी आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो आपका वॉइस और प्रोग्राम एवरीथिंग इज वेरी नाइस शहबाज गुल बात कर रहा हूँ मिस हम आपके स्टूडेंट हैं आप हमारी टीचर हैं
0: अच्छा
1: ठीक है जितने भी मेरे लिसनर एशियन लोग हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल नेपाल जिधर से भी हैं हम सब आपको ग्रेट ऑनर और गुड विशेस करते हैं आपका प्रोग्राम बहुत ही नाइस है जैसे क्रिकेट का एक स्टार्ट होता है ना मैच 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टार्ट मिस सिमरन
0: थैंक यू
1: वेलकम कीप इट अप आपकी वजह से हम लोग बहुत ही हैप्पी हैं और मेरे जितने हम आपके जो स्टूडेंट हैं मैं उनको सबको इकट्ठा करके एक क्लास में बैठ के आपको सलाम पेश करते हैं
0: थैंक यू
1: तमन्नाएं करते हैं गुड विशेस करते हैं और धन्यवाद
0: थैंक यू सो मच शहबाज जी आपने मेरी शाम बना दी यार बहुत बहुत शुक्रिया चलो अब हम खेलते हैं
2: रेडियो ओलिव पर
3: बहुत बढ़िया बहुत
0: एक चुटकी सॉन्ग आज का आप सुन के बोलेंगे अरे ये पता है मुझे तो दोस्तों बताओ ये कौन सा गाना है बताने के लिए आपको वॉइस नोट रिकॉर्ड करना लिख के मत भेजिए ये शाणपत्ती मेरे साथ मत करिएगा वॉइस नोट रिकॉर्ड करिए हे सिमरन अपना नाम बताइए गाना गा के बताना है तो बताइए बोल के बताना है तो बताइए एक चुटकी सॉन्ग ये एक बार फिर से नंबर याद रखना 3311063
4: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
5: क्या बात है सर क्या बात ये बात है कूल सॉन्ग

0: यार इतना प्यारा गाना। 8:31 So, हम खेल रहे हैं एक गेम जिसका नाम है
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया।
0: एक तो दोस्तों लिखना बंद कर दीजिए क्योंकि मैं बहुत नालायक हूँ, मैं नहीं पढ़ती हूँ मैसेजेस, आप मुझे वॉइस नोट भेजा करो यार। हमने आपको ये सुनाया था,
3: हाय सिमरन जी, हाउ आर यू, फाइन,
0: गुड,
3: यू फाइन,
0: यू फाइन, आई एम फाइन।
3: ये गाना है धूम मचा दे धूम,
0: हां जी,
3: धूम मचा दे, ठीक हो गया। बहुत अच्छा सॉन्ग है, ऐसे ही आप खुशबाश रहे, ठीक हो गया,
0: आप भी खुश रहे,
3: अल्लाह आपको ऐसे खुशबाश रखे, हमारे साथ ठीक हो गया
0: जी,
3: फिट फाट रखे।
0: जैसी मेरी आदत है ना, मेरे दोस्त लोग मुझे बोलते हैं मैं है ना बोलती हूँ, आप बोलते हो ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपने मतलब अपने 9 सेकंड के कितने 18 सेकंड के वॉइस नोट में 5 बार तो बोल ही दिया होगा।
4: हाय सिमरन, गुड इवनिंग,
0: वेरी गुड इवनिंग,
4: योर सॉन्ग इज धूम मचा ले,
0: वाह,
4: धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले,
0: बस थैंक यू सो मच। आप सबके मैसेजेस के लिए मैं उनको बिल्कुल भी थैंक यू नहीं बोल रही हूँ, कट्टी सी कर रही हूँ जिन्होंने मुझे लिख के भेजा है। यार ऐसे मत किया करो, वॉइस नोट भेजा करो, इसी बहाने मुझे आप लोगों की आवाज सुनने का मौका मिलता है यार। और लो फिर
5: संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को,
0: एक नंबर गाने चल रहे हैं और इसके साथ साथ हाय हाय दिल जिगर फेफड़े सब ले जाता है ये गाना।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज बिपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: नहीं यही स्टूडियो पे मिलेंगे, सितारों में नहीं मिलेंगे। मुसाफिर कैफे, उसका ये गाना है।
1: तू मेरा हो गया, इतना ही काफी है, दिल मेरा जुड़ गया तुमसे ये काफी है।
0: और याद रखना।

ਮੈਂਗੇ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਮਾਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਹੈ कल शाम को 5 बजे फिर से होती आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत सारी गल्लां बहुत सारी बातें और बस आपको पता है कि जबान मेरी रुकती नहीं है, जो दिल में होगा मैं बोल दूंगी। तो आज अपनी बैटरी जो है ख़त्म तो नहीं हुई है, बैटरी चार्ज है, लेकिन मेरे को टाइम जो है अलाउ नहीं कर रहा है कि सिमरन कौर यहाँ पे बैठ के थोड़ी और बातें कर ले। सो खाना भी दरवाइश कर दे रो, चेहरे वटे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल में दुखाना। बी नाइस टू एवरी वन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो।

Good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. और शो का नाम है Midnight Lounge. So यहाँ पर सबसे पहले आज शुरू करते हैं एक कहानी. किसी किंग की नहीं, किसी बिलियनियर की नहीं, किसी माँ की है. एक मदर जो अपनी नोटबुक लेकर रोज एक कैफे जाया करती थी. 1990s का एडिनबर्ग, ठंडी हवा, एक गर्म कप चाय और कॉर्नर वाली टेबल. और उस टेबल पर बैठकर जेके रॉलिंग, उस वक्त दुनिया जो है उन्हें जानती भी नहीं थी, ना कोई बेस्ट सेलर, ना कोई मूवी डील, ना कोई ऑटोग्राफ लेने आता था. उनके पास सिर्फ एक नोटबुक थी और एक कहानी, जो धीरे धीरे उस नोटबुक पे जो पेजेस हैं उस पर धीरे धीरे बन रही थी. वो लिखती हैं, जब उनकी छोटी बेटी जो है वो उनके पास वहीं कैफ़े में जो स्ट्रॉलर होता है उसमें सो रही होती थी, कभी चाय ठंडी हो जाती थी, कभी कॉफ़ी ख़त्म हो जाती थी, लेकिन कहानी रुकती नहीं थी. और वही कहानी आगे चलकर हैरी पॉटर एक ऐसी स्टोरी बनी जिसने दुनिया भर के लोगों को पढ़ने से दोबारा प्यार करना सिखाया. सोचिए, कभी कभी लाइफ का सबसे बड़ा जो चैप्टर है किसी ग्रैंड बिगनिंग से नहीं, बस एक खाली पेज और एक कप चाय से शुरू होता है. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर आप आज अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू करें तो उसका टाइटल क्या होगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

किसी को गले लगाना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ एक बार किसी को गले लगाने ने पूरी फिल्म की पहचान बदल दी। 2003 फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS, डायरेक्टर राजकुमार हिरानी। फिल्म शूट हो रही थी, स्टोरी में कॉमेडी थी, इमोशन था, लेकिन सेट पर एक छोटा सा आइडिया आया, किसी को गले लगाना, नॉर्मल सा हग, यू नो, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, ना ड्रामेटिक डायलॉग, सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान को गले लगा रहा था। राजकुमार हिरानी को लगा कि इस गले लगाने में कुछ तो अलग है, और धीरे धीरे उसने नाम निकाला और नाम रखा जादू की झप्पी। बस रिलीज के बाद ये सिर्फ फिल्म का डायलॉग नहीं रहा, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, हर जगह लोग कहने लगे कि एक जादू की झप्पी हो जाए, एक छोटा सा सीन जो स्क्रिप्ट का हीरो नहीं था, फिल्म का दिल बन गया। कभी कभी लाइफ में भी सबसे यादगार पल प्लान नहीं होता, बस हो जाता है। तो बताइए कि आखिरी बार किसने आपको किसी जादू की झप्पी के साथ गले लगाया था जो आज भी आपको याद है। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है मिडनाइट लाउंज।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।

आपने कितनी बार अपना जो अम्ब्रेला है वो खोया है, एक बार, दो बार या शायद उससे भी ज़्यादा। जापान में भी लोगों को यही प्रॉब्लम थी, हर बार बारिश, हर बार नई अम्ब्रेला। ये बात नोटिस की एक बिजनेसमैन ने, नाम था ताकाओ डॉय। उन्होंने सोचा लोग अम्ब्रेला इसीलिए नहीं संभालते क्योंकि वो उनके लिए स्पेशली नहीं होता, तो उन्होंने शुरू किया वाटरफ्रंट नाम की कंपनी। आइडिया सिंपल था, अफोर्डेबल अम्ब्रेला लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी और इतना ब्यूटीफुल कलर्स कि लोग उन्हें संभाल कर रखने लगे। आज जापान में वाटरफ्रंट दुनिया का सबसे बड़े अम्ब्रेला ब्रांड्स में से एक माना जाता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, एक बिजनेस टेक्नोलॉजी से नहीं, एक बारिश वाले दिन से शुरू हुआ। कभी कभी ना सक्सेस किसी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने से नहीं आता, ये रोज़ की छोटी सी इनकन्वीनियंस को समझने से आता है। ऐसे ही कई सारे अम्ब्रेला शॉप्स इंडिया में भी हैं जो बहुत ही कलरफुल, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके फेवरेट कलर्स के हिसाब से मिलते हैं और आप उन्हें मतलब हमेशा संभाल के रखना चाहते हो। तो बताइए, आप रेनी पर्सन हैं या फिर आपको भी कतर की ये गर्मी और जो थोड़ी सी सर्दी होती है कुछ टाइम के लिए वो पसंद है? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव।
2: ये है मिडनाइट।

एक कहानी एक गाने की, उस इंसान की जिसने म्यूजिक को सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस करवाया है। सो इट वॉज 1997, ए आर रहमान एक नया गाना कंपोज कर रहे थे, नाम था माँ तुझे सलाम। अब रिकॉर्डिंग के टाइम पर रहमान बार बार कंपोजिशन और वोकल्स पर काम करते रहे। उनका मानना था कि जब तक इमोशन सही महसूस ना हो गाना कंप्लीट नहीं होता। जब एल्बम रिलीज हुई किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं पूरा इमोशन बन जाएगा। आज भी जब ये गाना बजता है लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं, रुक जाते हैं। शायद इसीलिए ग्रेट सॉन्ग सिर्फ म्यूजिक से नहीं बनते, वो बनते हैं पेशेंस से, फीलिंग से और उस परफेक्शन से जिसकी तलाश हम सब करते हैं, जो सिर्फ आर्टिस्ट को दिखाई देती है। सो आज का सवाल है कि ऐसा कौन सा गाना है जो आप कितनी भी बार सुन लो कभी आपको पुराना ही नहीं लगता। ऐसी कोई स्टोरी, ऐसा कोई गाना, ऐसा कोई मोमेंट जो आपको लगता है कि यार दिस वॉज द बेस्ट। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो बिंदास. ये है मिडनाइट लव. ये है मिडनाइट.

कभी ऐसा हुआ है कि आप इतने एक्साइटेड हो गए हो कि खुद को संभालना मुश्किल हो गया हो? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। साल था 2000, मतलब आज से 26 साल पहले लंदन में एक नया ब्रिज बना था जिसका नाम था

डिज़ाइन इम्प्रूव हुआ और फिर दोबारा खोला गया। आज भी वो लंदन की शान है। कभी कभी प्रॉब्लम हमारी स्पीड नहीं होती, बस टाइमिंग होती है, और हर जो यू नो स्टम्बल है फेलियर नहीं, एक बेटर वर्जन की बिगनिंग होता है। ये आप याद रखिए। यू नो ये हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि यार ये तो फेल हो गया, बट नहीं, उसके बाद कुछ बड़ा होने वाला होता है। सो कभी आपकी लाइफ में भी कोई प्लान पहली बार फेल हुआ है और दूसरी बार वही सक्सेसफुल हो गया हो? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज। नंबर सेम है 3311-1063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

कभी कभी एक छोटी सी गलती दुनिया का सबसे बड़ा डिस्कशन बन जाती है। 2019 की बात है, दुनिया भर के लोग देख रहे थे गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल सीजन को। एक इमोशनल सीन चल रहा था और वहाँ पर रॉयल कैरेक्टर्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन फैन की नज़र अजीब चीज़ पर गई। टेबल पर रखा था एक मॉडर्न टेक अवे कॉफी कप, एक ऐसा कप जो उस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो गई, अब मीम्स बनने लगे, न्यूज चैनल ने भी इस पर स्टोरीज चला दी। अब बाद में मेकर्स ने डिजिटली कप हटा दिया, लेकिन तब तक वो कॉफी कप टेलीविजन हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी लोग पूरी कहानी भूल जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी डिटेल हमेशा याद रह जाती है। लाइफ भी शायद ऐसी ही है, हम सोचते हैं कि हमारी बड़ी अचीवमेंट याद रखेंगे, पर कभी कभी उन्हें हमारी एक छोटी सी काइंडनेस या एक फनी मोमेंट ही याद रह जाता है। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आप डिटेल्स के पीछे भागते हो, या फिर पहले छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं यार, इमोशंस शुड बी देयर, बाकी सब तो इग्नोर किया जा सकता है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। यू आर लिसनिंग मिडनाइट लाउंज, स्टे ट्यून्ड, चियो बिंदास।

सो आज एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जहाँ पर रात के 2 बजे हो या सुबह के 4 बजे हो, हर वक्त लाइट जलती रहती है। स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, पढ़ रहे होते हैं, अपने ड्रीम्स लिख रहे होते हैं। सो ये है लाइब्रेरी ऑफ बर्मिंघम इन इंग्लैंड, ठीक है, जिसके कुछ स्टडी जो स्पेसेस हैं एग्जाम सेशन में 24 आवर्स तक खुले रहते हैं। दुनिया के कई सारे बड़े यूनिवर्सिटीज और पब्लिक लाइब्रेरीज भी इस तरह से लेट नाइट 24 आवर्स स्टडी स्पेसेस चलाते हैं। सोचिए जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का एक अलग चैप्टर लिख रहे होते हैं। किसी के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, किसी की रिसर्च चल रही है, किसी की पहली नॉवल चल रही है और शायद किसी का सपना वहाँ पर बुन रहा होता है। मुझे हमेशा लगता है कि रात सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, रात उन लोगों के लिए होती है जो अपनी कहानी बदलने की हिम्मत रखते हैं। सो इसीलिए सुबह की सक्सेस अक्सर किसी की रात की मेहनत जो है वो दिखाती है, वो बताती है कि इसने रात भर बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, रिसर्च की है और इसी का सपना ये इसे मिल रहा है। सो आई विल से कि ऐसे आप मुझे बताइए कि जब आप स्कूल या कॉलेज में थे तब आप कैसे पढ़ाई करते थे, क्या पैटर्न था आपका। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: Welcome back. You are listening Radio Olive 106.3 FM. So let's talk about last thought of the day. Awards. Yes. हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है, लेकिन सोचिए अगर आपका नाम अनाउंस हो, पूरा हॉल तालियां बजा रहा हो और फिर भी स्टेज पर कोई ना आए. ये सच में हुआ था 1973 एकेडमी अवार्ड्स में. बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीता, ठीक है, मार्लोन ब्रांडो ने. फिल्म थी द गॉडफादर. सबको लगा कि अब जो है वो स्टेज पर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए. उनकी जगह स्टेज पर पहुंची एक यंग नेटिव अमेरिकन एक्टिविस्ट. अब उन्होंने ऑडियंस के सामने एक छोटा सा मैसेज पढ़ा और बताया कि उन्होंने अवार्ड एक्सेप्ट नहीं करने का फैसला क्यों लिया है. पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया था. कुछ लोगों ने तालियां बजाई, कुछ लोगों ने हैरान होकर बस देखा, लेकिन उस रात ऑस्कर से ज़्यादा उस डिसीजन की बात हुई. कभी कभी सबसे यादगार जो मोमेंट्स होते हैं अवार्ड जीतने के नहीं होते, बल्कि उस अवार्ड के साथ लिए गए कुछ फैसले भी होते हैं. और शायद लाइफ भी इसी तरह चलती है. लोग हमेशा याद नहीं रखते कि आपने क्या किया, क्या अचीव हुआ, क्या मिला, क्या खोया. ज़रूर याद रखते हैं कि आपने उसके बाद क्या किया. सो आज का सवाल है, अगर आपको अपनी लाइफ के किसी एक काम के लिए अवार्ड मिले तो वो किसके लिए होना चाहिए. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस मिडनाइट लाउंज. फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट.
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिन

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Homes R Us. We complete your home.

0: साइकिल।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है।
1: तेरा भी बोलना,
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दूं क्या?

0: रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लिख के दूं क्या?
2: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

106.3 FM, Gio Bendaz.

Doha's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

listening to Radio Olive 106.3 FM, Geo Bindas.